0: कोई फ्लैट नहीं होता है, प्लेटफार्म पर सोना पड़ता है, तो कहता है कि एक फ्लैट हो जाए, हे भगवान थोड़ी कृपा कर मेरे ऊपर और एक फ्लैट हो जाएगा तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, है ना। आप लोगों के बंगले बने हो, कितने सुखी भी हैं मैं पूछता हूं। सुविधा में सुख नहीं, हम सुविधाओं में सुख खोज रहे हैं। सुख परमात्मा में है, परंतु हम संसार में सुख खोज रहे हैं, सुविधाओं में, विषयों में, भोगों में सुख देख रहे हैं। नहीं, भक्त का संसार सुखरूप होता है और संपूर्ण त्रैलोक्य को वो आनंद से भर देता है। त्रैलोक्य का अर्थ होता है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। वो तीनों काल में आनंद रूप रहता है, आनंद रूप। हमारा संसार दुख रूप होता है क्योंकि सुविधा में हम सुख देख रहे, इसलिए सुख देखना हो तो परमात्मा में सुख देखो, सुख देखना हो तो आत्मा में सुख देखो, वही कल्याण है। और आज का शिव पर्व है, शिव पर्व अर्थात कल्याण का पर्व है। कल्याण बाहर नहीं होता है, ध्यान रखना। कल्याण का अर्थ क्या है? कल्याण का तात्पर्य, कल्याण का अर्थ क्या समझते हो आप? क्या कोई वस्तु प्राप्त होना कल्याण है? पुत्र की प्राप्ति होना, धन की प्राप्ति होना, घर की प्राप्ति होना, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होना, क्या इसका नाम कल्याण है? कल्याण का मतलब होता है बंधन से मुक्ति। क्या कल्याण का मतलब क्या होता है? बंधन से मुक्ति। आज का पर्व बंधन से मुक्ति का है, जो हम बंधे हुए हैं उस बंधन से छूटने का नाम कल्याण है। कोई वस्तु प्राप्त होना कल्याण नहीं है। जैसा आप समझते हैं कि पुत्र की शादी हो गई तो पुत्र का बड़ा कल्याण हो गया कहते हैं, है ना? वास्तविक शादी की कि बर्बादी की है? आप बताओ कि आपका कितना कल्याण हुआ? शादी आप लोगों ने की, कितना कल्याण हुआ है? कोई छाती पर हाथ लगाकर कह सकते हो कि हमारा कल्याण हुआ है? क्यों? परंतु बर्बाद हुए कह सकते हो कि नहीं कहते हो? कहा महाराज क्या करे, बर्बाद हो गया, तो लुट गए, है ना। अर्थात जो हम बंधन में बंधे हुए हैं उस बंधन से छूटने का नाम कल्याण है। किस बंधन में बंधे हैं और उस बंधन से छुड़ाने वाली भक्ति है, ध्यान रखो। क्या? इसलिए तो भक्तिरेव गरीयसी कहा है। भक्ति सभी साधनों में श्रेष्ठ बताइए, मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। बंधन से छूटने वाले या छुड़ाने वाले जितने साधन हैं उन साधनों से सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, समझ रही ना। धर्म भी तुम्हें बंधन से छुड़ाता है परंतु अल्प बंधन से, थोड़े वस्तुओं से, वस्तुओं के बंधन से। आप किसी वस्तु को दान देते हो, उस वस्तु की आसक्ति तुम्हारे अंदर से छूट जाती है कि यह हमने दे दिया, छोड़ दिया उस आसक्ति। धर्म भी तुम्हें आसक्ति से छुड़ा लेता है, परंतु विषयाशक्ति से धर्म तुम्हें छुड़ा सकता है, विषयों के बंधन से तुम्हें छुड़ा सकता है। परंतु भक्ति तुम्हें अपने बंधन से छुड़ाती है, ध्यान रखो। क्या करती है भक्ति? विषयों के बंधन से नहीं छुड़ाती है, तो तुम्हें अपने बंधन से छुड़ाती है। तुम अपने बंधन से बंधे हुए हो और उसी छूटने का नाम ही वास्तविक कल्याण है। क्या? पत्नी के बंधन से या पति के बंधन से या घर के बंधन से छूटना कल्याण नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे तो बैरागी बहुत मिल जाएंगे जिन्होंने घर छोड़ दिया है, बाल बच्चों को छोड़ा है, धन संपत्ति को छोड़ा है, नंगे घूमते हैं पशु के समान, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि बंधन से छूटे हैं।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta 5. Thank you.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: ओम नमः शिवाय। द नेक्स्ट प्रोग्राम इज शिव कीर्तनास। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन कैलासपते सॉन्ग संग बाय श्री चेम्बई वैद्यनाथ भागवतर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

बोधितनूकृत तनूकृद्बोधि तनूकृदिति तनूकृत बोधिप्रमतिश्च च प्रमतिर्बोधि बोधिप्रमतिः प्रमतिश्च प्रमतिरिति प्रमतिः।

नमः। ओम समस्त भुवन व्यापिने नमः। ओम समृद्धये नमः। ओम सततोदिताय नमः। ओम सूक्ष्मात् सूक्ष्मतराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूक्ष्म स्थूलत्ववर्जिताय नमः। ओम सूक्ष्मतराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूक्ष्म स्थूलत्ववर्जिताय नमः। ओम जह्नुकन्याधे।

नमः। ओम सुजस्मिताय नमः। ओम अनर्घरत्न खचितकिरीटाय नमः। ओम निकटे स्थिताय नमः। ओम सुधारूपाय नमः। ओम सुराध्यक्षाय नमः। ओम सुब्रुवे नमः। ओम सुखगणाय नमः। ओम सुधिये नमः। ओम भद्राय नमः। ओम भद्रप्रदाय नमः। ओम भद्रवाहनाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम

ओम जन्म कर्म निवारका नमः, ओम मोचका नमः, ओम मोह विच्छेत्रे नमः, ओम मोदनीजाय नमः, ओम महाप्रभवे नमः, ओम युक्तकेशाय नमः, ओम विविशदाय नमः, ओम विश्वक्सेनाय नमः, ओम शोधकाय नमः, ओम सहस्राक्षाय नमः, ओम सहस्रांघ्रजे नमः, ओम सहस्रवदनाम्बुजाय नमः।

नमः ओम दानवांतकाय नमः ओम चतुर्वक्त्राय नमः ओम चक्रधराय नमः ओम पंचवक्त्राय नमः ओम परंतपाय नमः ओम विश्वस्यायतनाय नमः ओम वर्याय नमः ओम मंदारुजन वत्सलाय नमः ओम गायत्री वल्लभाय नमः ओम गार्ग्याय नमः ओम गायकानुग्रहोन्मुखाय नमः

नमः ओम शतक्रतवे नमः ओम कूटस्थाय नमः ओम कूर्मपीठस्थाय नमः ओम कुष्मांड गृहमोचकाय नमः ओम कुलंकृषकृपा सिंधवे नमः ओम कुशलिने नमः ओम कुंकुमेश्वराय नमः ओम गदाधिराय नमः ओम गणस्वामिने नमः ओम गिरिष्ठाय नमः ओम तोमरायुधाय नमः ओम जमनाय नमः ओम जगदाधाराय नमः ओम जमदग्नये नमः।

0: சிவாய. யூஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் .org ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் .org. ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் .org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் presented by Swami Sri Atmanand Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Chit Chaturvidam, char chaitanya ho gaye na, Brahma chaitanya, Ishwar chaitanya, Kutastha chaitanya, Jeev chaitanya. Char chaitanya. Ab Jeev chaitanya ke liye antakaran ki avashyakta hai. कूटस्थ चैतन्य के लिए अंतकरण की आवश्यकता नहीं है. ईश्वर चैतन्य के लिए माया की आवश्यकता है, ब्रह्म चैतन्य के लिए माया की आवश्यकता नहीं है. देख लो, स्पष्ट है ये. ब्रह्म चैतन्य माया के बिना भी वह ब्रह्म चैतन्य है, अंतकरण के बिना भी वह ब्रह्म चैतन्य है, कूटस्थ के बिना भी वह ब्रह्म चैतन्य है. इसीलिए ब्रह्म चैतन्य के लिए और किसी की होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ईश्वर होने के लिए माया की आवश्यकता है और जीव होने के लिए अंतकरण की आवश्यकता है. या दूसरी भाषा में, पंचदशी की भाषा में समझना चाहो, ईश्वर होने के लिए शुद्ध सत्व की आवश्यकता है. पंचदशी की भाषा में समझना चाहो, ईश्वर होने के लिए शुद्ध सत्व की आवश्यकता है और जीव होने के लिए मलिन सत्व की आवश्यकता है. मलिन सत्व न हो तो जीव हो ही नहीं सकता है. इसलिए वेदांत की यह दृष्टिकोण है, जीव हो और वह जीव शुद्ध हो, शुद्ध रूप में रहे, यह संभव ही नहीं है. वेदांत का यह निश्चित है, जीव हो और वह शुद्ध हो, यह संभव. जीव को चाहे शुद्ध करने के लिए तो उसकी उपाधि जो मलिन सत्व है उसको हटाए बिना जीव शुद्ध नहीं होगा, और मलिन सत्व हटाते ही जीव जीव ही नहीं रहेगा, तो शुद्ध जीव की कल्पना कहां से आ गई तुम्हारी? शुद्ध जीव की कल्पना कहां से आ गई? जीव की जीवपना रहे तब ना उसकी शुद्धता की बात आवे. जीव की जीवपना उपाधि बाधित होते ही वो तो ब्रह्म हो गया, तो जीव की जीवपना ही नहीं रहती है. और जीव को जीव बनाने के लिए उपाधि चाहिए, उपाधि फिर शुद्ध उपाधि जीव की नहीं हो सकती, और शुद्ध उपाधि होते ही वो फिर ईश्वर हो जाएगा. यदि उपाधि को शुद्ध करोगे तो वो फिर जीव नहीं होगा, फिर ईश्वर हो जाएगा वो, क्योंकि शुद्ध उपाधि ईश्वर का है, मलिन उपाधि जीव का है. यही तो जीव और ईश्वर में अंतर का कारण है. यूं तो मूल रूप में चेतना में जीव और ईश्वर में अंतर नहीं है, उपाधि की भिन्नता से जीव और ईश्वर में भिन्नता है. दोनों की उपाधि बात कर देते हैं तो जीव ईश्वर की एकता है. वहां शुद्धता भी नहीं, मलिनता भी नहीं. कहां? दोनों की एकता में शुद्धता भी नहीं, मलिनता भी नहीं. और जब दोनों को अलग करते हो तो ईश्वर में शुद्धता, जीव में मलिनता, और उसी मलिनता के चलते जीव अनेक प्रकार के पराधीनता, सुख दुखता का अनुभव, जन्म मृत्यु आदि की प्राप्ति. और जीव को उस उपाधि की बात करना ही वेदांत का प्रयोजन है. अस्ति प्रकाशत इति व्यवहार प्रवर्तते तच्चास्तित्वं प्रकाशत्वं कस्मिन् अर्थे प्रतिष्ठितं किं तेषु तेषु सर्वे वार्थेषु किं वा सर्वात्मनि ईश्वरे. अब प्रश्न हुआ कि ईश्वर तो ईश्वर है, तो ईश्वर क्या है महाराज? बोले सर्वात्मा जो है वो ईश्वर है. सर्वात्मनि ईश्वरे यानी समष्टि उपाधि वाला चैतन्य ईश्वर है. तो सर्वात्मा कहने का मतलब समष्टि उपाधि. समष्टि उपाधि का मतलब हो गया आपकी जो उपाधि है वो भी ईश्वर की उपाधि है, क्योंकि आपकी उपाधि व्यष्टि उपाधि है, उसकी उपाधि समष्टि उपाधि है। ये अंतर है। तो सबकी उपाधि होने के कारण सब में वो विद्यमानता है, सबकी उपाधि होने के कारण वह सभी में विद्यमान है। जैसे छोटे घड़ा, बड़ा घड़ा, कुल्लड़, कसौरा, प्याले, दीपक, जो कुछ भी बनाओगे वे सब अलग अलग नाम, अलग अलग रूप होंगे, लेकिन सबके सब मिट्टिका से बनी हुई होने के कारण मृत्तिका सर्वात्मा हो गई। मृत्तिका क्या हो गई? सर्वात्मा हो गई। सर्वात्मा माने घड़े की भी आत्मा, कुल्हड़ की भी आत्मा। बात समझ गए कि नहीं? घड़े की भी आत्मा और कुल्हड़ की भी आत्मा, दीवक की भी आत्मा, कसौरे की भी आत्मा, सुराही की भी आत्मा, हर चीज की आत्मा मृत्तिका हो गई कि नहीं? देख लो। इसीलिए वो जो मृत्तिका सर्वात्मा, इसी तरह परमात्मा सर्वात्मा, क्योंकि वो सबकी सत्ता है। सभी को सत्ता दिया हुआ होने के कारण वह सर्वात्मा है, और सभी को प्रकाशित करने के कारण वह सर्वभाषक है, सर्वावभाषक है वो। ईश्वरत्वम च जीवत्वम सर्वात्मत्वम च कीदृशम्। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, और ईश्वर सर्वात्मा किस कैसे है, और जीव भी सर्वात्मा कैसे बन सकता है? देख लो, एक बात ख्याल रख लेना। जीव की अल्पात्मता, अल्पशक्तिता, ये बनी हुई है। समझ गए कि नहीं? जीव की अल्पात्मता, अल्पशक्तिता, ये बना हुआ है, स्वरूपता नहीं है। स्वरूपता ये अल्पात्मता और अल्पसत्ता, अल्पज्ञता, ये स्वरूप में नहीं है, लेकिन उपाधि के चलते हैं, इसलिए बना हुआ है। और इसको सर्वात्मा होने के लिए जो बना था उसका बिगड़ना जरूरी है। जीव जब तक नहीं बिगड़ेगा तब तक वो सर्वात्मा नहीं होगा। अब तुम क्या कहोगे इसको, बिगड़ना कहोगे कि सुधरना कहोगे? तो हम तो कह देंगे बिगड़ना है। जीव सुधरेगा कि बिगड़ेगा? जीव की जीव पना, उपाधि बिगड़ गई तो बिगड़ गया, वो बिगड़ गया तो क्या, जीव बिगड़ गया? बोलो। तो घट सुधर कर सकोरा बनेगा कि घट बिगड़ कर सकोरा बनेगा? इन घट फूटेगा ना तो घट कपाल बनेगा ना, तो घट कपाल जो बनेगा, घड़ा फूटने के बाद उस घड़े के टुकड़े होते हैं ना, उसको घट कपाल बोलते हैं संस्कृत भाषा में, नैयायिकों की भाषा में। घट ध्वंस ही घट कपाल के लिए कारण है। घट फूटे बिना घट कपाल बनेगा? तो घड़ा बिगड़ेगा कि सुधरेगा? घड़ा सुधर कर घट कपाल बनेगा कि घड़ा बिगड़ कर घट कपाल बनेगा? तो हम तो ये कहेंगे कि उपाधि का नाश होना ही तो जीव का बिगड़ना है, उपाधि का बने रहना, जीव सुधरना। जीव सुधरना का मतलब है यह है, उपाधि का त्यागना नहीं है। हां, इतना ही जरूरी है कि उस उपाधि में तमोगुण की अधिकता के चलते हम ये कह दिया करते हैं कि जीव बिगड़ गया। सत्वगुण की अधिकता के चलते हम ये कह दिया करते हैं कि जीव सुधर गया। बात समझ में आई कि नहीं? दारू पीने के चलते हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बिगड़ गया। दूध और फल के रस पीने के चलते हम कहते हैं कि वो व्यक्ति सुधर गया। तो क्या वो दूध और रस पीने लग जाए तो व्यक्ति ही नहीं रहेगा? व्यक्ति तो रहेगा, व्यक्ति तो रहेगा, लेकिन वो सुधरा हुआ व्यक्ति रहेगा। और दारू पीने लग जाएगा तो व्यक्ति ही नहीं रहेगा, रहेगा लेकिन कौन सा रहेगा? बिगड़ा हुआ रहेगा। उपाधि, उपाधि तो सुधरा हुआ व्यक्ति में भी है और बिगड़े हुए में भी है। मनुष्य के रूप में आइडेंटिफाई करोगे कि नहीं बिगड़े हुए को, दारू पीने वाले को, ये मनुष्य है। जनगणना में दारू पीने वाले को पशु के कोटि में गणना करते हो कि मनुष्य के कोटि में गणना करते हो? है गणना में तो मनुष्य में करोगे ना। अच्छा, दूध और फल के रस पीने वाले को गणना तो मनुष्य के रूप में करोगे। तो दूध पीने लग गया तो मनुष्यता खत्म हो गई, ये बात नहीं है। और दारू पीने लग गया तो भी मनुष्यता खत्म हो गई, ये बात नहीं है। गणना तो मनुष्य की कोटि में होगी। अब उसकी उपाधि खत्म हो जा वे, तब उसको न मनुष्य में गणना कर पाओगे, न सुधरे हुए मनुष्य के रूप में गणना कर पाओगे, न बिगड़े हुए मनुष्य के रूप में। मनुष्य के रूप में ही गणना नहीं होगी। इसी तरह उपाधि सर्वथा बाद होते ही जीव जीव के रूप में गणना नहीं हो सकती है। तो क्या फिर? तो परमात्मा ही है, इसलिए जीव ब्रह्म की एकता वेदांत में। अब ये किसी लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, इसलिए वह जीव स्वतंत्र मानते हैं। परमात्मा जिस तरह स्वतंत्र पदार्थ है, चैतन्य है, उसी तरह जीव स्वतंत्र व्यक्ति है, चैतन्य है। और भक्ति न करने के कारण ये बिगड़ा हुआ है, भक्ति कर जाए तो सुधरा हुआ है। इतने ही है, दारू पीने के कारण बिगड़ा हुआ है, दूध पीने लग जाए तो सुधर जाएगा। और क्या, विषय सेवन में आसक्त हो गया तो दारू पीने लग गया तो भगवान से दूर हो गया, और भक्ति रस पीने लग गया तो दूध पीने लग गया भगवान के नजदीक हो गया। तो भगवान के नजदीक पहुंचना, भगवान के सुख आनंद का उसको भी आभास मिलने लग जाएगा, उसकी छटा मिलने लग जाएगी, तो वहां भी आनंद होगा। तो हम जैसे कहते हैं क्या मदिरा पीते हो, दूध पी लो, क्या आनंद आता है, इसी तरह भक्ति में आनंद आता है। हम तो ये कहते हैं कि दूध ही पीना न पड़े, ये विचार करो ना भाई है? दूध पीने के चलते ही, दूध के लोभ में आते ही वो मदिरा में पहुंच गया। वो भोक्ता बनना ही जीव की बिगड़ने की प्रक्रिया है, कर्ता बनना ही जीव की बिगड़ने की प्रक्रिया है। और जीव की कर्ता और भोक्ता भाव से निकल जाने का एक ही उपाय है कि उन उपाधियों के, जिन उपाधि से वह कर्ता बना था और जिन उपाधियों से वह भोक्ता बना था, उस उपाधि से वह अपना संबंध कट कर लेवे, हटा लेवे। ये उपाधि से मेरा कोई संबंध नहीं है। आज मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, थोड़ी चर्चा चल रही थी सुबह, हाँ, तो कहे कि महाराज भूल गए, बहुत भूलने की आदत पड़ गई। तो आप लोगों के भी भूलने की आदत है ना, है? ये तो सभी की है भूलने की आदत। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो उनको थोड़ा सा असहज लगा होगा ये वाक्य, तो हमने उनकी फिर व्याख्या कर दी, उनकी असहजता निकल जाए। हम किस अभिप्राय से कह रहे हैं कि भूलना ईश्वर की कृपा है, किस अभिप्राय से कह रहे हैं? तो उसकी फिर हमको व्याख्या करनी पड़ी, स्पष्टीकरण, नहीं तो वो अन्यथा लेकर महाराज जी से सुबह सुबह दर्शन करने आए और आशीर्वाद ले चाहते थे, खूब याद हो जावे, ऐसे आशीर्वाद मिल जावे। महात्मा ने कहा कि भूलने की है तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, यही आशीर्वाद है। तो उसका स्पष्टीकरण करना भी जरूरी होता है। तो हमने कहा उनको समझाया, देखो भाई, हम इतने ही चाहते हैं कि तुम अपने को नहीं भूलना, बाकी दुनिया को भूल जाओ तो कोई नुकसान नहीं है। तो हमने कहा तुम्हारी पत्नी तुमको क्या कहती है, है? पति कहती है ना, तुम मेरे पति हो, यही कहती है कि नहीं? और ये बात तुम भूल गए कि नहीं? पत्नी ने तुम्हारे बारे में जो कहा, तुम मेरे पति हो, ये बात तो तुम नहीं भूल रहे हो ना? भूल रहे हो? अच्छा, तुम्हारी बेटी ने तुम्हें कहा कि तुम मेरे पापा हो, है? भूल गए? नहीं भूले हो? तो तुम्हारे बाप ने कहा कि तुम मेरा बेटा है, तो भूल गए? नहीं भूले हो? तुम्हारा भाई ने कहा कि तुम मेरे भाई हो, तो वो भी नहीं भूले हो? तो संसार के लोगों ने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कहा है, बहन ने भाई कहा, बेटी ने पापा कहा, पत्नी ने पति कहा, बाप ने बेटा कहा है, मित्र ने मित्र कहा, ये सब कुछ तो भूल नहीं रहे हो तुम। तो इन लोगों का कहना तुम नहीं भूल रहे हो, तो फिर हमारा कहना क्यों भूल रहे हो? कोई प्रेमपुरी आने वाले महात्मा ने तुमको पति कहा? ताल बोलो है। किसी भी महात्मा ने तुम मेरे पति हो कहा? तुम मेरी पत्नी हो कहा? नहीं कहा ना। प्रेमपुरी में आने वाले कोई भी महात्मा ने तुम मेरे बेटे हो भी नहीं कहा होगा, मेरे भाई हो भी नहीं कहा होगा, मेरा मित्र हो नहीं भी कहा।

कि जैसे और सब कुछ भूल रहे हो, धीरे धीरे ये संसारी लोग जो तुम्हें कह रहे हैं वो भी भूल जाओ। और महात्मा का कहना मत भूलना, बस इतना ही है। महात्माओं ने तो तुम्हें स्त्री हो तो नहीं कहा है ना, कहा है? महात्माओं ने प्रेमपुरी आश्रम में तुम्हें तुम स्त्री हो, तुम महिला हो, तुम जनाना हो, ये तो नहीं कहा है, है? और महात्माओं ने तुम पुरुष हो ये भी नहीं कहा है। अब फिर जब तो फिर संसारियों ने कहा कि तुम स्त्री हो तो तुम उसको भूलते नहीं हो कि अंतिम मरते दिन तक तुम कहीं भी लिंग लिखने के प्रसंग में तुम हमेशा मैं स्त्री हूं, जिससे भी परिचय दो तो मैं स्त्री हूं, मैं महिला हूं, मैं फीमेल हूं, मैं मेल हूं, मैं पुरुष हूं, ये कहते रहते हो। और महात्मा कहते रहते हैं तू कुटस्थ है, तू सत है, तू चित है, तू आनंद है। तो ये भूल जाना ही ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो हम तो ये कहेंगे कि अभी तक संसारियों ने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा उसका भूल जाओ। हाँ, तो अपने बारे में मत भूलना, शरीर के बारे में भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरीर के बारे में स्त्री पुरुषता भूल जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, परंतु अपने को भूलते हुए शरीर को भी भूल जाओगे तो फिर व्यवहारिक सत्ता में बड़ा नुकसान आ जाएगा, तो फिर वो पागल है कहेंगे, है ना? लेकिन अपने को याद करते हुए व्यावहारिक सत्ता में के सब भूल जाओगे, शरीर शरीर का धर्म आदि सब कुछ भूल जाओगे, शरीर से संबंधित संबंध को भूल जाओगे तो तुम्हें पागल नहीं कहेंगे, तुम्हें समझदार कहेंगे। सुखदेव जी ने क्या किया, सुखदेव जी ने क्या किया? वेदव्यास जी क्या कहते हैं, तुम मेरे पुत्र हो, है ना? पुत्रेति तन्मयतया, तुम मेरे पुत्र हो, बेटा बेटा बेटा, कौन कह रहा है? वेदव्यास जी। सुखदेव जी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कि हां मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम मेरे बाप हो, है? कोई प्रतिक्रिया आई सुखदेव की तरफ से? नहीं आई। सुखदेव जी को तो ये पता ही नहीं कि मैं किसका बेटा हूं और मेरा कौन बाप है, ये दोनों चीज सुखदेव जी भूले बैठे हैं कि नहीं है? मैं किसी का बेटा हूं, कोई मेरा बाप है, ये दोनों चीज सुखदेव जी भूल बैठे हैं, उनको उनका भान ही नहीं है। इसी तरह मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, ये भी उनको भान नहीं है, है? दिगंबर होकर चले हुए हैं, स्त्री पुरुष का भान नहीं है। ब्रजवालाएं स्नान कर रही हैं और सुखदेव जी को आते हुए देखा, उनको कोई मतलब नहीं, नहीं स्नान कर रही हैं। अब वेदव्यास जी को आते ही उन्होंने कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, भागवत का प्रसंग। तो क्यों भाई ऐसा हुआ, वेदव्यास जी ने पूछ लिया, हाँ? जवान मेरा बेटे को देखकर तुम लोग लज्जा नहीं करते और मैं बूढ़े को देखकर लज्जा करते हो, है? क्या बात है? बोले महाराज, उसकी समदृष्टि होते ही हमारी भी समदृष्टि हो गई। देख लो, उनकी समदृष्टि होने पर हमारी भी समदृष्टि हो गई, और जहां आपकी विषम दृष्टि है इसलिए हमको भी विषम दृष्टि करना पड़ा, आपकी विषम दृष्टि होने के चलते हमको विषम दृष्टि करना पड़ा। आप ये छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा, उसमें वो भाव नहीं है, स्त्री पुरुष का भाव नहीं है, तो उस बच्चे के सामने आप भी उस भाव में बंधते नहीं हो, बंधते हो, है? छोटा दूध पीता हुआ बच्चा, उस बच्चे में स्त्री पुरुष का भेद का भाव नहीं रहता है, तो आप भी उस बच्चे के सामने उस भेद का परित्याग कर देते हो, करते हो कि नहीं? उसके सामने नंगे होने में आपको कोई संकोच होगा? दूध पीते हुए बच्चे के सामने नहीं होता, भेद खत्म हो गया, उसने भेद नहीं किया तो आप भेद नहीं करोगे। और वही जवान जब होता है तो उसके पास सामने भेद आता है तो फिर आप भी भेद करने लग जाओगे, है? पांच वर्ष पहले उसके सामने आपने भेद नहीं किया था और पांच वर्ष के बाद आप खुद भेद करने लग जाओगे। कारण क्या? तो उसमें भेद आ गया तो आप भी भेद करोगे। तो ईश्वरत्वम च जीवत्वम,

0: जीवपना क्या है, कैसे हुआ ये जीव। जानीया तत्कथम जीवा किम तज ज्ञानस्य साधनम। जीव अपने पारमार्थिक स्वरूप को, सर्वात्म भाव को, सर्वसत्ता भाव को, सर्वचित्ता भाव को वो कैसे जाने, किस प्रक्रिया से जाने। क्या जीव हमेशा जीव ही रहेगा कि जीव की ये जीवपना अनित्य है? तो वेदांत की दृष्टि में जीव की जीवपना अनित्य है, क्योंकि उपाधि अनित्य है, इसलिए जीव की जीवपना अनित्य है। जानी या तत्कथम जीव किम तद ज्ञान से साधनम, उस ज्ञान का साधन क्या है, कौन से ज्ञान के द्वारा जीव अपने को सर्वात्म रूप में जान पाएगा, उसकी उपाधि का बाध होगा। कौन से ज्ञान के द्वारा, घट ज्ञान के द्वारा कि पट ज्ञान के द्वारा? घट ज्ञान पट ज्ञान ये जो अपरा विद्या है, उस अपरा विद्या के द्वारा जीव अपने आप को सर्वात्म रूप में नहीं जान सकता। जीव को अपने आप को सर्वात्म रूप में जानने के लिए, निश्चय करने के लिए पराविद्या की आवश्यकता है। फलव्याप्ति के रूप में जीव अपने आप को सर्वात्म रूप में नहीं जान सकता है, वृत्ति व्याप्ति के रूप में ही जीव अपने आप को सर्वात्म रूप में जान सकता है। तो ये उपाय भी बताना है, प्रश्न यहां उपस्थापित की गई है। जानीयात तत्कथम जीव किम तद ज्ञान से साधनम, ज्ञाना तस्य फलम किंचा। अपने आप को कुटस्थ और सर्वात्म भाव को जानने के बाद उस ज्ञान का फल क्या होगा, उपलब्धि क्या होगी? हाँ, एक महात्मा वेदांत पढ़ने लग गए, महाराज हमको वेदांत पढ़ाइए। तो हमने कहा कि क्या करोगे वेदांत पढ़कर? बोले आपसे वेदांत पढ़ेंगे तो फिर हम भी कथाकार बनेंगे। अच्छा भाई, तुम कथाकार बनकर क्या करोगे? बोले कथाकार बन जाएंगे तो बढ़िया खाने को मिलेगा, सब लोग नमस्कार करेंगे, पीने को मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। अब कथाकार न बने, जब तक कथाकार नहीं बने तो कहीं जाओ आश्रमों में कमरा नहीं मिलता है, कथाकार बन के जाओ तो रहने के लिए कमरा बढ़िया। कथाकार बनते ही मान सम्मान सब कुछ, और कथाकार नहीं बने तो फिर खड़िया पलटन है। तो हम ये चाहते हैं कि हम भी कथाकार बने, और इतने प्रयोजन के लिए तुम कथाकार बनना चाहते हो और उसके लिए वेदांत पढ़ना चाहते हो तो ये तो कोई उत्तम चीज नहीं है। उसका फल क्या है? ज्ञान तस्य फलम किं स्यात् एकत्वम च कथम भवेत्। ज्ञान का फल है एकता। ज्ञान का फल क्या है? एकता, एकत्व। हाँ, विभेदता ये ज्ञान का फल नहीं है। जीवात्मा परमात्मा की जो एकता ही ये ब्रह्म विद्या का फल है, प्रयोजन है। सर्वज्ञ सर्वकर्ता च कथम आत्मा भविष्यति। ये जीवात्मा सर्वज्ञ सर्वकर्ता कैसे होगा? तो बोले छोटी उपाधि को छोड़कर बड़ा उपाधि ग्रहण करता है तो सर्वज्ञ सर्वकर्ता बनेगा। बात समझ गए कि नहीं? छोटी उपाधि को छोड़कर बड़ा उपाधि को ग्रहण करता है तो सर्वज्ञ सर्वकर्ता बन जाएगा, और उपाधि को छोड़ जाएगा तो वह कुटस्थ असंग हो जाएगा, वो सर्वज्ञ सर्वकर्ता नहीं बनेगा, वो केवल ज्ञप्त्री मात्र रहेगा। ये वेदांत की प्रक्रिया है। ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं होगा और सर्वकर्ता नहीं होगा। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वकर्ता होगा, जीव सर्वज्ञ नहीं होगा और सर्वकर्ता भी नहीं होगा। जीव अल्पज्ञ अल्पकर्ता होगा। जीव अपनी छोटी उपाधि बड़ी उपाधि में मिला देता है तब जीव भी सर्वज्ञ सर्वकर्ता बन जाता है बड़ी उपाधि के चलते, और उपाधि को छोड़ देता है तो सर्वकर्ता सर्वज्ञ सर्वकर्ता नहीं बनता है, केवल ज्ञप्त्री मात्र रहता है, ज्ञान मात्र रहता है, चिन्ह मात्र रहता है, आनंद मात्र रहता है, अद्वितीय रहता है। सर्वज्ञ सर्वकर्ता च कथम आत्मा भविष्यति शिष्यम प्रति इत्थम। इस तरह यह वेदांत विचार के सारे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का जो सार है वो शिष्य नहीं, यहां गुरु के सामने प्रश्न के रूप में, विचारणीय प्रश्न के रूप में रखा है, और इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के माध्यम से जो कुछ भी विचार किया जाएगा यहां उपस्थापित, ये सारे विकल्प के बारे में ही विचार किया जाएगा। पृच्छम पृच्छन्तम् वक्तुम् आरभते गुरुः, ऐसे शिष्य जब इस तरह पूछता है तो उसके उत्तर देने की इच्छा से आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी इस तरह उपदेश करना आरंभ करते हैं। उपदेश का आरंभ विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, ये उपदेश का आरंभ कल से मूल श्लोक की व्याख्या। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Enadi Nada Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, aaj hum sunenge aur ek Nayanmar ya sant ki kahani, jinka naam hai Enadi Nathar. ये तमिल प्रदेश में भक्ति आंदोलन के एक सामाजिक संत थे। भक्ति समाज के इस दौर में यह देखा जाता है कि तमिल प्रदेश में छोटी जाति के कई व्यक्तियों के आदर्श जीवन के कारण उन्हें संत होने का गौरव मिला है। कील वंश के लोग प्राय व्यापार करते थे और अपने युद्ध कौशल के लिए विख्यात थे। इसी ईल वंश में चोल क्षेत्र जो कि दक्षिण भारत में है, उसमें एनादिनाथ का जन्म हुआ। राजाओं और वीर युवकों को तलवार चलाने की शिक्षा देना उनका काम था। उनके पूर्वज भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिया करते थे। वे युद्ध कला से संबंध विविध क्षेत्रों में सैकड़ों वीरों को हरा चुके थे। उनका चचेरा भाई अतिशूरन था। कुल परंपरा से अतिशूरन भी अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण देता था, लेकिन एनादिनाथ की योग्यता और लोकप्रियता को देखकर वे ईर्ष्या से जलते थे। उसने एनादिनाथ को अपने मार्ग से हटाने की ठान ली। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक योजना बनाई और एक दिन एनादिनाथ के द्वार पर चल पड़े और उन्होंने ये एनादिनाथ को ललकार कर कहा, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने की के वंशानुगत अधिकारों का निर्णय शक्ति परीक्षण से होता है। हम दोनों अपने अपने शिष्यों सहित मुकाबला कर लें। इस द्वंद्व में जो विजयी हो उसको सभी आयुध विद्यालयों का प्रधान होने का अधिकार मिलेगा। एनादिनाथ ने इस आवाहन को स्वीकार किया और निश्चित दिन और स्थान पर अपने शिष्यों समेत पहुंच गए। अतिशूरन भी अपने योग्य शिष्यों के साथ उस स्थान पर पहुंच गए। दोनों दल परस्पर टकराए, भयंकर मुकाबला हुआ, रक्त की नदियां बह चली। अंत में अपने योद्धाओं को पूरी तरह से पराजित होते हुए देखकर अतिशूरन युद्ध से भाग खड़ा हुआ। उनके अनेक योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जो शेष रहे वे युद्ध क्षेत्र से इसी भांति भाग गए जिस प्रकार से सत्य ज्ञान होने पर मनो कामनाएं, क्रोध, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि दूर भाग जाते हैं। अब अतिशूरन को ज्ञात हुआ कि वह एनादिनाथ को कभी पराजित नहीं कर सकते। वह व्याकुल हो पड़े और उन्होंने एक षड्यंत्र की रचना कर डाली। वह जानते थे कि एनादिनाथ के मन में शिव चिन्ह विभूत और विभूतधारी शिव भक्तों के प्रति अपार श्रद्धा की भावना थी। उसने इसे अपने षड्यंत्र का आधार बनाया। उसने पुनः एनादिनाथ को द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित किया और उनसे एकांत में कहा कि व्यर्थ में रक्तपात के स्थान पर शिष्यों को बलि नहीं बनाना चाहिए, परंतु दोनों का निर्णायक संघर्ष ही उचित है। निर्धारित स्थान और दिन पर एनादिनाथ और अतिशूरन पहुंच गए। एनादिनाथ ने अपने परिवार तथा शिष्यों तक को इस द्वंद कार्य की सूचना न दी। युद्ध प्रारंभ हुआ। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में हीरो जड़ी लकड़ी की ढाल बनाकर अतिशूरन ने अपना मुख छिपाए रखा। जिस क्षण इनादिनाथ का हाथ प्रबल हुआ और वह आक्रामक मुद्रा में आए तो प्रवंचक अतिशूरन ने अपनी ढाल नीचे कर दी। इनादिनाथ विस्मय पूर्वक खड़े हो गए क्योंकि अतिशूरन के मस्तक पर शिव की पवित्र विभूत शोभायन हो रही थी। उन्होंने विचार किया, शिव चिन्ह धारण करने वाले की हत्या पाप है, पर यदि मैं तलवार फेंक दूं तो अतिशूरन को किसी निहत्ते को मारने का पाप लगेगा। यह विचार करके वे तलवार हाथ में रखे रहे और अतिशूरन को अपनी हत्या करने का अवसर दे दिया। भक्त के हृदय की भावनाओं को जानते हुए शिव ने उसी क्षण उन्हें दर्शन देकर उन्हें अनुग्रह प्रदान किया। वे कैलाश चले गए। इस कथा में वर्णित इनादिनाथ और इससे को हम मामूली व्यक्ति नहीं समझ सकते। शत्रु के क्षण मात्र में ही यमलोक भेजने की शक्ति रखते हुए भी और अतिकूल शत्रु को क्षण मात्र में ही यमलोक भेजने की शक्ति और उसके अनुकूल स्थिति होते हुए भी उन्होंने इस कारण शत्रु को मनमानी करने दी क्योंकि वह शिव वेशधारी है। इस अद्भुत कथ्य कृत्य के लिए इन्हें पागल समझना भारी भूल होगी। एक श्रेष्ठ आदर्श को जीवन लक्ष्य बनाने के बाद संत लोग उस सिद्धांत में समझौता नहीं करते, उनकी प्रकृति में यह नहीं है। इसलिए ये सच में महान और उच्च कोटि के नायन मारिया संत थे। इनके बारे में सुंदर, जो कि बहुत बड़े कवि भी थे और संत थे, ने कहा है, मैं इनादिनाथ के दासों का भी दास हूं। हम इनका अनुकरण नहीं कर सकते, परंतु एक अद्भुत आदर्श के रूप में इन्हें स्मरण जरूर कर सकते हैं। इनादिनाथ सच में शिव के एक प्रबल और उच्च कोटि के भक्त थे। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय।
4: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
1: हमको घाटा होता है तब फिर हमारे दुश्मन को समझ में आता है कि ईश्वर जो करता है सही करता है ना, यही है ना। और हम क्या कहेंगे, ये ईश्वर का ये क्या किया है ईश्वर, ये भी कोई करने का ढंग है क्यों जी? और हमारा दुश्मन क्या कहता है, ईश्वर जो करता है सही करता है। तो मंत्री ने कहा कि ईश्वर जो करता है सही करता है। राजा को गुस्सा आया और उस मंत्री को जेल में बंद कर दिया। इसका दिमाग खराब हो गया है, बंद कर दिया जेल में, मंत्री पद से सस्पेंड कर दिया, बंद कर दिया। बोल, तेरे को मंत्री पद से भी हटा दिया और जेल में बंद कर दिया, अब वर्षों जेल में सड़ना पड़ेगा, अब बोल ईश्वर क्या कर रहा है। तो मंत्री का कहना था ईश्वर जो करता है सही करता है। उस अवस्था में भी मंत्री ने क्या कहा, ईश्वर जो करता है सही करता है। राजा ने सोचा कि इसका दिमाग ठीक से खराब हो गया है, पहले मेरी उंगली कटी तो कहता था ईश्वर जो करता है, अब खुद जेल में बंद हो गया, मंत्री पद से सस्पेंड हो गया, फिर भी बोलता है ईश्वर जो करता है सही करता है। इसका दिमाग ठीक से खराब हुआ है, तो बंद ही रखो जेल में। मंत्र तो वही माला लिया और ओम नमः शिवाय करना शुरू कर दिया। ईश्वर जो करता है सही करता है ना। जब मंत्री पद में था, बहाल वाला ड्यूटी में था, तो माला लेकर बैठकर जप नहीं कर पाता था, किसी भी समय राजा बुला सकता था, तो अब तो राजा बुलाएगा नहीं ना उसको, पुरुषोत्तम मास में खूब जप करेगा वो। ईश्वर जो करता है सही करता है। अब राजा ने दूसरे मंत्री को नियुक्त किया, वर्षों उसको जेल में बंद कर दिया। एक वर्ष के बाद जब वो राजा उस नया मंत्री को, नवनियुक्त मंत्री को लेकर जंगल गया शिकार खेलने, तो वहीं शिविर लगाकर बैठकर शिकार खेल रहा था, एक दिन भटक गया जंगल में। राजा भटक गया, कई बार सुनी है आप लोगों ने कहानी। उसी जंगल में एक तांत्रिक भैरव साधना कर रहा था, कपालिक। तो उस तंत्र साधना के अंतिम में नरबलि देना है, अपने चेलों को कहा कि जाओ बढ़िया नर खोज के लाओ, भगवान को हमारे देवता को बलि चढ़ाना है, उसके बाद हम जो चाहें वो ठीक हो जाएगा, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जाओ। सेवक लोग गए तो राजा जंगल में भटका हुआ था, उसी को पकड़ लिया, ले आए महाराज, चलो तैयार करके भैरव के आगे सिर गर्दन झुकाकर रखो, हम तलवार लेकर आते हैं। तांत्रिक अंदर गया, मंत्र पढ़ता हुआ तलवार, नंगे तलवार लेकर आया और राजा भैरव के आगे गर्दन तान कर बैठा हुआ है, क्योंकि उसको बलि चढ़ाना है, प्रतिकार कर नहीं सकता है वो किसी से, राजा एकला है, अकेला है। और उसके तांत्रिक के चेले हट्टे कट्टे पांच सात हैं, क्या प्रतिकार करेगा वो। जब राजा आया तो उसको गर्दन में तलवार प्रहार करने से पहले उसके अंगभ आदि प्रत्यंग को देखना शुरू किया, बलि खंडित तो नहीं है
2: कोई अंग प्रत्यंग यदि विकल हो, खंडित हो, तो ऐसा व्यक्ति बलि नहीं चढ़ता। तो कान ठीक थे, नाक ठीक थे, सब कुछ ठीक था, ऊपर तो हाथ देखने लगा तो उंगली कटी हुई थी। उसने कहा कि ये हमारे देवता को, भैरव को बलि नहीं चढ़ेगा, क्योंकि पहले से कटी हुई है।
1: कहां से ले आए? ले जाओ इसको, ले जाके छोड़ दो, दूसरा खोज के लाओ।
2: अच्छा महाराज, हमको क्या पता, छोड़ दिया तो उसकी जान बची। एक वर्ष पहले परमात्मा ने, ईश्वर ने उसकी उंगली कटवा कर एक वर्ष के बाद गर्दन बचाई। ये कौन समझेगा बोलो? उस राजा को समझ में आया था पहले उंगली कटी थी तब? ईश्वर ने ये जो उंगली काटी है मेरे गर्दन को बचाने के लिए उंगली काटी है, ये किसी को समझ में आता है? हैं? जब उंगली कटती है तो तब समझ में आएगा किसी को?
1: एक वर्ष बाद अब राजा को समझ में आया कि मंत्री जो कह रहा था ठीक है, वाह ईश्वर क्या बढ़िया, उंगली कटाकर गर्दन बचाया।
2: ईश्वर तू जो करता है ठीक करता है, अपने बारे में तो समझ में आ गया राजा को। अब आकर मंत्री को पूछा, है मेरे बारे में तो ईश्वर ने जो किया है वो ठीक किया, आज की घटना ये है भाई, एक वर्ष पहले उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरा गर्दन कट जाता, भगवान ने उंगली कटवाकर गर्दन बचाया, इसलिए भगवान को धन्यवाद दे रहा हूं मैं। मेरे बारे में तो ये समझ में आया भाई,
1: अब तुझे जो जेल में बंद किया था, नौकरी से हटा दिया था, उस समय तूने कहा था कि ईश्वर जो करता है ठीक करता है, अब एक वर्ष से तू जेल में बंद पड़ा है, बोल तेरे बारे में ईश्वर ने क्या अच्छा किया,
2: तेरे बारे में ईश्वर ने क्या अच्छा किया मुझे बताओ। बोले महाराज, ईश्वर बहुत ही दयालु है, एक वर्ष पहले तुमने मुझे सस्पेंड करके जेल में बंद न किया होता, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जंगल में जाता तुम्हें खोजते हुए,
1: और तुम तो उंगली कटे हुए होने के कारण बच जाते हैं,
2: गर्दन किसकी कटती? मेरा तो उंगली कटा नहीं था। हैं?
1: वो तांत्रिक के चेले किसको पकड़ते फिर? विकल्प में मुझे पकड़ते, और क्योंकि मेरा कोई अंग भंग हुआ नहीं था
2: तो गर्दन किसकी कटती? मेरी कटती। ईश्वर ने एक वर्ष पहले से ही मेरी गर्दन बचाने की तैयारी की है। उसने जेल में बंद ना किया होता तो आज तुम्हारी जगह मेरे गर्दन कट जाते।
1: उंगली काटकर तुम्हारे गर्दन बचाया, जेल में बंद करके नौकरी से हटाकर मेरे गर्दन बचाया।
2: ईश्वर कभी गलत नहीं करता, ये भाव क्या है? परितोष, ये संतोष का भाव है, परितोष का भाव है। परमात्मा का भक्त, भगवान का भक्त कभी भी उसके लवों में परमात्मा के प्रति, किसी की प्रति भी शिकायत नहीं रहती। समझे कि नहीं?
1: भगवान के भक्तों में, परमात्मा के भक्तों में किसी के भी प्रति,
2: परमात्मा की तो बात छोड़ दो, किसी के भी प्रति शिकायत नहीं रहती। इसलिए शायद किसी कवि ने कहा ना, मुझे वो कविता याद आ गई, आ गई थी शिकायत लबों पे, आ गई थी शिकायत लबों पे, लब माने वोट,
1: शिकायत करने के लिए शिकायत अंदर से वोट तक तो आ गई थी,
2: लेकिन करते किससे? वो शिकायत करेंगे तो करेंगे किससे, बोलो है? तुम जो शिकायत करो, तुम्हारी शिकायत को सुनकर समाधान करने वाला कौन है? हैं? कौन समाधान कर देगा? क्योंकि जिसको तुम शिकायत सुना रहे हो उसी के ओठों में हजार शिकायत भरे पड़े हैं, वही हजार शिकायतों के गठड़ी ढो के चल रहा है। बोलो, कोई छाती में हाथ रख के कहता है, कह सकता है, संसार में किसी के प्रति मेरी कोई शिकायत नहीं है, कह सकता है? हैं? जब ड्राइवर समय में नहीं आता है तो क्या करते हो? हैं? कहते क्या हो, तो क्यों नहीं आए समय में? तनख्वाह पूरी ले लेता है और काम करने में क्या कहोगे बोलो? और तुम ड्राइवर की शिकायत करोगे, ड्राइवर तुम्हारी शिकायत करता है, नहीं करता है? हैं? वो भी शिकायत करता है, गधे की तरह काम लगाता है रात दिन, वो भी अपनी शिकायत करता है। सबके सब ऐसे ही है भाई, बहू सास की शिकायत, सास बहू की शिकायत, बेटा बाप की शिकायत, बाप बेटे की शिकायत, अड़ोसी पड़ोसी का शिकायत, पड़ोसी अड़ोसी का शिकायत है, जनता नेताओं की शिकायत, नेताएं जनता पब्लिक की शिकायत। ले जी, आ गई थी शिकायत, करते किसे? विचार किया उसने, जो स्वयं हजारों शिकायत कर लेकर घूम रहा है उसके सामने शिकायत करना बेकार है कि नहीं, बोलो? हैं? इसलिए करना ही बेकार था। फिर क्या किया तुमने महाराज? तो वो कभी बोलता है, तो शिकायत करना छोड़कर हमने क्या की? दर्द पीकर चल पड़े तो चलते रहे, दर्द पीकर चल पड़े तो चलते रहे, हार कर बैठ जाते तो बैठना बेकार था। है? अरे शिकायत करके हार करके बैठना तो बैठना ही बेकार है ना, बैठकर क्या उपलब्धि होगी बोलो? अरे चलोगे तो कुछ न कुछ उपलब्धि होगी, नहीं तो बैठकर क्या उपलब्धि होगी? घुटने में दर्द है तो घुटना है तो दर्द होगा ना घुटने में दर्द है, अब घुटने में दर्द है करके घर में बैठे रहोगे तो उपलब्धि क्या होगी बोलो? उपलब्धि क्या होगी, बेनिफिट क्या होगा? दर्द है तो है, तो मलते हुए लकड़ी हाथ में लेकर आइया ऊह आह करते हुए प्रेमपुरी आओगे, कुछ तो सुनने को मिलेगा, उपलब्धि हुई कि नहीं बोलो? दर्द पीकर चल पड़े तो चलते रहे, लेकिन हार कर बैठ जाते तो बैठना बेकार था। इसीलिए जिंदगी हार कर बैठने के लिए भी नहीं है, वाणी शिकायत करने के लिए नहीं है। भक्तों की वाणी शिकायत करने के लिए नहीं है, और भक्तों की जिंदगी दान दो, भक्तों की जिंदगी हार कर बैठने के लिए नहीं, हर परिस्थिति में पुरुषार्थ करने की है, उद्यम करने की है, साधना करने की है, और भक्तों की वाणी शिकायत करने की नहीं है। पी जाना है परिस्थिति को, पी जाना। पीने का अर्थ होता है कंप्रोमाइज करो, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। अरे उम्र भी हो गया, घुटना भी, कब तक कितना ये शरीर, इतने बड़े शरीर को ये घुटना कब तक ढोता ढोता फिरेगा? क्या 40 साल की उम्र में तुमने शिकायत की थी घुटना दुख रहा है? हैं? कितने काम किया था बोलो। अब भाई अब तक इस शरीर को ढोते ढोते इस घुटने को 70 साल हो गया, कब तक ढोएगा भाई? तुम वजन बढ़ाते जा रहे हो और कह जा रहे हो घुटने को कि दर्द होता जा रहा है, है? घुटना दर्द होता जा रहा है तो वजन घटाते जाओ। वजन घटाते नहीं हो और शिकायत करते हो कि घुटना दुख रहा है, घुटना दुख रहा है। कब तक ढोए वो घुटना बेचारा? तो जिंदगी हारने के लिए नहीं, वाणी शिकायत करने के लिए नहीं। इसीलिए भगवान के भक्ति रूपी बादल कादंबिनी कहां रहती है? महेश पद पुष्करम आवसंती, परमात्मा के चरण रूपी आकाश में भक्ति रूपी बादल विचरण करती है। आकाश को छोड़कर बादल अन्यत्र नहीं विचरण करते, भक्ति परमात्मा के चरण को छोड़कर अन्यत्र आश्रय नहीं ले सकती है। जैसे आकाश की बादल वृष्टि करते हैं यानी पानी बरसते हैं, और भगवान के चरण की भक्ति रूपी बादल क्या बरसती हैं? परितोष वर्षति, संतोष की वृष्टि करते हैं। भक्तिर्महेश पद पुष्करमा वसंती कादंबनीव कुरुते परितोष वर्षम। तो क्या होगा महाराज उस वर्षा से? संपूरितो भवति यस्य मनस्तटाकः, तो भक्त के मन रूपी खेत भक्ति रूपी बरसात से बरसे हुए परितोष से संपूरितः, मन रूपी खेत में पानी लबालब भर जाए। बारिश यदि, बादल यदि वृष्टि करे तो किसान के खेत पानी से लबालब भर जाएगा कि नहीं? है? इसी तरह भगवान परमात्मा के चरण रूपी भक्ति रूपी बादल वृष्टि करे तो भक्तों के परितोष रूपी संतोष रूपी वृष्टि करे तो भक्तों के मन रूपी खेत लबालब भर जाएगा। उपमा अलंकार, उससे क्या होगा महाराज? जैसे खेत पानी से लबालब भर जाए तब उस खेत में क्या होगा? तज्जन्म सस्यम अखिलम सफलम। सस्य माने धान, वनस्पति, अनाज, औषधि, समझे नहीं? बारिश होगी ना तब धरती में वनस्पति, सस्य माने घास, सस्य माने वनस्पति, सस्य माने धान, धान मक्का ज्वार आदि जो कुछ भी हो वनस्पति, पुष्णामी च औषधि सर्वासोम भूत्वा रसात्मकम। तब मनस्तटाक परिपूर्ण लवा लब भर जाए तब मनुष्य का, भक्त का तज्जन्म सस्य, जन्म रूपी धान खेती फलीभूत होगा, सफल होगा। समझे कि नहीं? अनाज लगाओ, पानी नहीं है, तो खेत में लगाया हुआ अनाज क्या फलेगा? खेत में तुम वनस्पति लगाओ, फल के वृक्ष लगाओ, और उस वृक्षों को बारिश नहीं है, मल नहीं है, जल नहीं है, तो सूख जाएगा, फल लगेंगे उसमें? सफल होगा कि असफल होगा वो वृक्ष? अफला हो जाएंगे वो। इसलिए प्रार्थना करते हैं ना, पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहिता। एक जगह प्रार्थना किया ये मंत्र का, काले वर्षतु पर्जन्या पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहिता ब्राह्मण संतु निर्भया। तो प्रार्थना करते समय कुछ दलित बैठे हुए थे, नाराज हो गए,
1: ये मंत्र गलत है, ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए।
2: क्यों महाराज? बोले ब्राह्मण संतु निर्भया,
1: ये देश में केवल ब्राह्मण लोग निर्भय रहे हैं,
2: ये प्रार्थना कर रहे हैं मंत्र से, गलत मंत्र है।
1: क्या हम शूद्र लोग क्या भयभीत रहे हैं?
2: ब्राह्मणा, ये ब्राह्मणों ने रचना की ये प्रार्थना, इसलिए अपने लिए इन्होंने कहा कि ब्राह्मणा संतु निर्भया, और हम लोगों के लिए तो प्रार्थना ही नहीं कर रहे, तो हम क्या संसार में हमेशा डरते हुए रहे समाज में? भाई आज योग दिवस बड़ा बवाल चल रहा था,
1: हमारे धर्म में योग करते समय पहले 3 बार ओम का उच्चारण करना पड़ेगा, हम योग ओम का उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए ये योग
2: ये हिंदुओं का है, हमारा नहीं है, हम नहीं करेंगे, बवाल खड़ा किया ना। लेव जी, अब सूर्य नमस्कार हम नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा दूसरों को हम नमस्कार नहीं कर सकते हैं, तो सूर्य हिंदुओं के देवता हो सकते हैं, हम मुसलमान के देवता नहीं? अरे उल्लू हो, तुमको रोशनी दे रहा है कि नहीं
1: है?
2: बिना पैसा का रोशनी दे रहा है कि नहीं सूर्य? तो तुम ऐसे कैसे कह रहे हो कि भाई मुसलमान का देवता नहीं है? हाँ, मुसलमान होने के बाद सूर्य की रोशनी उनको न मिलता तो वो ये बात कहते, रोशनी तो मिल ही रहा है, फिर बिना मतलब का विवाद। और दूसरी बात, वो आसन वास्तव में उस आसन से सूर्य को नमस्कार किया ही नहीं है, तो उस आसन का नाम सूर्य नमस्कार आसन क्यों रखा था? क्योंकि उसमें 12 पोज हैं, इतनी हेतु था उसका। वो जो फिजिकल एक्सरसाइज का जो पोज है उसमें 12 पोज है और सूर्य 12 है, तो वो 12 संख्या के समानता के चलते उस आसन के पोज को सूर्य नमस्कार ये कहा, अन्यथा वो सूर्य नमस्कार नहीं है। हाँ, कोई एक्सरसाइज है, व्यायाम है, अब नाम दिया सूर्य नमस्कार आसन, बोले सूर्य को हम क्यों नमस्कार करें, तो हम नहीं करेंगे। तो सरकार ने सूर्य नमस्कार आसन के आइटमों को ही हटा दिया, कराया नहीं, आइटम ही हटा दी, और आसन करो सूर्य नमस्कार न करो। और एक महात्मा ने कह दिया, ओम उच्चारण नहीं करते तो अल्लाह अल्लाह करो। हे भगवान, क्या बवाल है भाई। सस्य तज्जन्म सस्यम अखिलम सफलम च न अन्यत व्यतिरेक, उसी का जन्म फलीभूत होगा,
1: सफल होगा, तो वही पौधा आगे जाकर फलीभूत होगा।
2: जिस पौधे को लगाने के बाद नियमित रूप में मल और जल का सिंचन होता रहा हो,
1: और मल और जल का सिंचन नहीं होगा तो वह पौधा सफल नहीं होगा, फलेगा ही नहीं।
2: तो ये जीवन भी तभी सफल होगा जब शिव भक्ति रूपी बादल शिव चरण रूपी आकाश में गर्जने लगेंगे और संतोष रूपी वृष्टि उस भक्ति रूपी बादल से बरसने लगेंगे, तो मन रूपी खेत संतोष रूपी पानी से लबालब भर जाएगा।
1: और मन रूपी खेत संतोष रूपी पानी से लबालब भरेगा
2: तो उसी मन के द्वारा परिचालित होने वाला जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा जीवन फिर क्या होगा? निष्फल। निष्फल का अर्थ क्या हुआ? जन्म जीवन बेकार चला जाएगा, जीवन बेकार चला जाएगा।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org। Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Nangarana बंधन से मुक्ति का साधन नहीं कहा जाता है, क्योंकि आप बड़े गहराई में बंधे हुए हैं, समझे ना? आपको उस बंधन का पता भी नहीं है कि हम कहां बंधे हैं। हम बाहर के वस्तुओं से बंधन मानते, परंतु बाह्य वस्तु आपको कोई नहीं बांधती है, ध्यान रखो। बाह्य वस्तु तुम्हें कोई बांध नहीं सकती है, तुम अपने ही बंधन से बंधे हुए हैं, इसलिए अपने ही बंधन से तुम्हें छुटना है, और ये केवल भक्ति छुड़ा सकती है, समझे ना? और कोई साधन नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भजन भक्ति होना चाहिए, भजन पुण्य नहीं होना चाहिए, भजन धर्म नहीं होना चाहिए, भजन सत्कर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए भजन में ध्यान रखना चाहिए, समझ गए? हमारा भजन क्या बन रहा है? यदि हम परमात्मा से समर्पित है, परमात्मा के बनकर के हम भजन कर रहे हो, तो निश्चित आपका भजन भक्ति बन रहा है। मंदिर में बैठने का अर्थ परमात्मा का बनना कदापि नहीं है। जितने पुजारी होते हैं ना, हम देखते हैं, हमारे विले पार्ले के पुजारियों को मैं देखता हूं, मंदिर में रहने का अर्थ परमात्मा का बनना नहीं है। तुम जंगल में रहो, बाजार में रहो, दुकान में रहो, तुम कहीं भी परमात्मा का बन सकते हो, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है। ये तुम्हें बोध हो जाएगा तो तुम कहीं भी परमात्मा का बन सकते हो, परंतु तुम तो परमात्मा को मंदिर में देखते हो, एक वस्तु में देखते हो, एक धातु में देखते हो, और तब तुम्हें लगता है कि हम मंदिर में जाएंगे तो परमात्मा का बनेंगे, घर में रहेंगे तो परमात्मा का नहीं बनेंगे, है ना? इस परिच्छिन्नता का, इस भाव का त्याग करना होगा, परमात्मा को सर्वत्र जानना होगा,
3: जब परमात्मा को सर्वत्र जानोगे तो परमात्मा सर्वत्र दिखेगा, और जब सर्वत्र परमात्मा दिखेगा तो आप परमात्मा का आपको बनने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए तो हमने कहा कि ये परमात्मा को जानना भी चाहिए, समझिए ना, बिना जाने भजन नहीं होता है, इसलिए भजन में ज्ञान आवश्यक है। और परमात्मा को जानने का अर्थ होता है तात्विक जानना। परमात्मा का जो तात्विक रूप है, जब तक उस तात्विक रूप का आपको बोध नहीं होगा तब तक परमात्मा को आप जान नहीं पाओगे, भले मान पाओगे, मान सकते हो परंतु जान नहीं सकते। मानने में और जानने में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, ध्यान रखो। मान्यता सत्य होती ही नहीं है, बोध सत्य होता है। मान्यता सत्य नहीं होती है, क्योंकि मान्यता मन की होती है और मन में हमेशा दुविधा रहती है। संकल्प विकल्पात्मक मन, ये मन का स्वरूप है। मन एक जैसा रह नहीं सकता है, कभी मानोगे कभी नहीं मानोगे, है ना? तो कभी मानोगे और कभी नहीं मानोगे तो दोनों भी झूठा हो जाएगा कि नहीं होगा? कभी हां कह रहे कभी ना कह रहे तो दूसरा आदमी आपको क्या कहेगा, बोलो, क्या सत्य कहेगा, झूठा ही कहेगा? इसी प्रकार से मन की मान्यता जो है वो कभी भी सत्य नहीं हो सकती है, परंतु बुद्धि में जो बोध होता है वो बोध सत्य होता है। और जानने का मतलब होता है बोध, बुद्धि में आपको अनुभव होना चाहिए। जैसे आपको आपने चेतनता का अनुभव है कि मैं चेतन हूं, है ना? क्या आपको अपना जड़ता का अनुभव होता है? शरीर की जड़ता का अनुभव आप कर सकते हो, परंतु शरीर की जड़ता का अनुभव करने वाला चेतन ही होगा कि नहीं होगा? तो जैसा आप अपनी चेतनता का अनुभव कर सकते हो, ऐसा ही परमात्मा का भी आपको अपने में अनुभव करना होगा। भिन्न रूप से नहीं, अभिन्न रूप से अनुभव करना होगा। और जब अभिन्न रूप से आप अनुभव करोगे तो परमात्मा के साथ एक हो जाओगे, फिर आपका प्रत्येक कर्म भजन बन जाएगा। क्या भजन का अर्थ केवल हाथ में माला लेकर के माला घुमाने का अर्थ भजन नहीं है, ना हाथ में मंजिरा लेकर के जोर जोर से बजाना भजन है, और ना राग रागिनियां गाना भजन है। संगीत है, भजन नहीं है, ध्यान रखना। संगीत को भजन मत समझो और भजन को संगीत मत बनाओ। संगीत जो होता है वो वाणी का होता है, भजन जो होता है वो बुद्धि का होता है, ध्यान रखो। समझ रहे ना? संगीत जो होगा वो वाणी का होगा, इंद्रियों का होगा। नृत्य भी संगीत है, परंतु संगीतकार उसी को ही भजन समझते हैं। नहीं, भजन बुद्धि का होता है, समझे ना? मैंने कहा भजनम नाम रसनम, भजन का अर्थ होता है रस। रस रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा तृप्त भवति, वो रस जब प्राप्त होता है तब जीवन में तृप्ति आती है, ध्यान रखो। भक्ति जीवन में आ जाती है तो नारद जी कहते यम लब्ध्वा पुमान तृप्तो भवति, ये भक्ति का फल है। भक्ति जीवन में आ जाती है तो तृप्ति हो जाती है। पूर्ण केला पूर्ण केला पूर्ण केला मनोरथ। तुकाराम कहते कि अब हम पूर्ण हो गए। कामना ही झालो पाई रिकामा, अब सब इच्छाएं समाप्त हो गई है, खाली हो गए। तृप्ति का अर्थ होता है खाली हो जाना, इच्छाओं से मुक्त हो जाना, कामनाओं से मुक्त हो जाना। इसका नाम भजन है, ये भक्ति है। भजन भक्ति का मतलब ये नहीं है कि संगीत, भजन संगीत नहीं है, भजन बोध है, बोध समझे, बुद्धि में। और तब भजन होता है जब बुद्धि समर्पित होती है। मई बुद्धि निवेश है, भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? मई बुद्धि निवेश है, तुम मन को बुद्धि को मन को मेरे में लगा दो, अर्थात मेरे को समर्पण कर। मैयासक्त मनपार्थ, हे अर्जुन तुम अपने मन को मेरे में आसक्त करो। मन परमात्मा में आसक्त हो जाए, बुद्धि परमात्मा में प्रविष्ट हो जाए, तब भजन होता है। ध्यान रखो, भला ये संगीत हो, संगीत को भजन मत समझो, और इसमें मोहित मत हो, भजन करने का प्रयास करो। परंतु हम तो संगीत को ही, यहां जब भजन संध्या होती है ना तो हॉल में बैठने के लिए जगह नहीं होती है, खचाखच भर देते हैं, क्योंकि वहां रस मिलता है, श्रृंगार रस मिलता है, श्रृंगार रस, बड़ा आनंद आता है, भले डोलने लगते हैं, है ना। परंतु क्या वो डोलने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? नहीं। ध्यान रखो, थोड़ा उठो, जगो, ये प्रेमपुरी अध्यात्म भवन है, समझे ना, संगीत भवन नहीं है। परंतु संगीत भवन बनाने जा रहे हैं अभी। यहां जो अध्यात्म का जो चिंतन चलना चाहिए वो न चल करके अभी दूसरा ही चिंतन हो रहा है, दुर्भाग्य है। देखो, भजन की ओर चलो, भजन भक्ति है, और भक्ति ही मुक्ति है। ध्यान रखो, क्या भजन ही मुक्ति है, मुख्य नाम हाति मोक्ष, ऐसी साक्ष्य बहुताज जी कहा है। परमात्मा का नाम मुख में आ जाए तो हाथ में मोक्ष आना चाहिए, मोक्ष समझे ना, अर्थात बंधन से। आपके मन में ये होना चाहिए कि हम निर्बंध है, निर्बंध, निर्भय है, निर्भय, और तब निर्भय हो जाते हैं कि बुद्धि जब परमात्मा में समर्पित हो जाती है, बुद्धि का परमात्मा में प्रवेश हो जाता है, तो मैं निर्भय, मन निर्भय बन जाता है। क्या बुद्धि यदि संसार में हो, बुद्धि यदि द्वैत में हो, बुद्धि यदि भोग में हो, तो तुम कभी भी भय से मुक्त नहीं हो सकते हैं, तुम्हारा मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। इसलिए मन में शांति चाहते हो तो बुद्धि में परमात्मा को बसाओ और बुद्धि परमात्मा में लगाओ, भोग में मत लगाओ। आपका जीवन बुद्धि के ऊपर निर्भर है। क्या लगाना किसके तरफ है? वो आपके ऊपर है, आपका पुरुषार्थ पर है। आप कहां रहते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, कैसे सोते हो, किस समय उठते हो, किस समय जगते हो, वो कोई प्रश्न नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ वही है कि आपकी बुद्धि कहां है, सावधानी वहां होना चाहिए, समझे ना। मुझे एक आदमी आया, कहा कि स्वामी जी आपकी नित्य दिनचर्या क्या है। हमने कहा कि कौन सी दिनचर्या बताना है भाई। कहा कि आप सुबह से उठते रात तक क्या क्या करते हो। हमने कहा कर्म बताना है तुम्हें क्या क्या करना है। लोग दिनचर्या पूछते हैं, है ना। इस दिनचर्या का कोई अर्थ नहीं है भक्ति में, परमार्थ में, अध्यात्म में इसका कोई तात्पर्य नहीं है। तुम क्या खाते हो, कैसे रहते हो, नंगे रहते हो या कपड़े पहनते हो, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। तुम रोटी खाते हो कि भूखे रहते हो, इसका भी कोई महत्व नहीं। तुम्हारा बुद्धि क्या कर रही है, तुम्हारा मन क्या कह रहा है, ये दो वस्तु परमात्मा को चाहिए। और वो यदि तुम परमात्मा को देते हैं तो तुम परमात्मा का बन सकते हो। भगवान ने जगह जगह अर्जुन को यही बात बताई है, है ना। गीता सुनते आ रहे हो, गीता पढ़ते आ रहे हो, परंतु करते क्या हो। आपको क्या किसी ने कहा कि आप तो भगवान हैं तो तुम्हें बड़ा डर लग जाता है, है ना। हाँ, तुम्हें गोविंद राम है, श्याम राव है कहे तो बड़ी छाती फूल जाती है, परंतु तुम्हें भगवान कहता तो मेरे डर लगता है, ब्रह्म कहे तो फिर तो बातें ही क्या है। फिर तो क्यों, इसी से पता चल जाता है कि तुम हो कहां, तुम्हारी स्थिति क्या है, इसी से पता लग जाती है। परमात्मा का

हे विश्वचि माझे घर ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, फिर उसको कोई कमी नहीं रहता है। तुका मने आम्मी त्रैलोकीचे राजे, शिवाजी को फटकार दिया था तुकाराम ने, दिवट्या छत्री घोड़े हे तो बजाज सी न पड़े, कहा है कि तुमने ये तो दिया, ये हमारे क्या काम का, हमारे तो कुछ भी जरूरत है नहीं है इसकी, तुम हमें क्या गरीब समझते हो, नहीं, तुका मने आम्मी त्रैलोकीचे राजे, तो ये एक महाराष्ट्र का राजा है, परंतु हम तो तीनों लोक के राजे हैं। देखो अधिकार किससे, भक्ति से। इसलिए परमात्मा को देना हो तो धन मत दो, परमात्मा को देना हो तो माला फूलमाला मत चढ़ाओ, परमात्मा को देना हो तो मन के पुष्पों को दो, मन को समर्पित करो, बुद्धि को अर्पण करो, बुद्धि और मन परमात्मा चाहते हैं, और ये तुम्हारा परमात्मा के साथ इसका संबंध जुड़ जाए, तब जो भी होगा वो भजन होगा, भजन रस बन जाएगा, रस क्या, भजनम नाम रसनम कहा है, भजन का अर्थ होता है रस, और रस कौन सा, ये नवरस नहीं, ब्रह्म रस, सेवी तो हा रस बाटी तो आनी का घ्यारी हो न का रान भरी। तुकाराम ने कहा है कि जिस रस का मैं पान करता हूं वही रस तुम्हें भी दे सकता हूं, तुम भी इसका पान करो, ब्रह्म रस, ब्रह्म रस, रसो वही सह। श्रुति कहती है कि परमात्मा रस है, परमात्मा रस, जो ये रस है ना, ये रस को ही सगुण साकार कहा है, परमात्मा का यही सगुण साकार रूप है, ध्यान रखो, ये रस जो है ये साकार है, गुण है, गुण, परमात्मा गुण वाला बन गया। ये रस यदि आपके जीवन में आ जाए तो आपके जीवन में तृप्ति आ जाती है, आपके जीवन में पूर्णता आ जाती है, आपके जीवन में जीवन की सफलता हो जाती है, आपका जीवन कृतकृत्य होता है, ध्यान रखो, अन्यथा कुछ नहीं है, टाली पीटने से कुछ नहीं होता है। इसलिए मन को हम कैसा परमात्मा को दें, कठिन नहीं है क्या, तुम अपने मन को परमात्मा को नहीं दे सकते हो तो परमात्मा को मन में लाओ, चलेगा, तुम परमात्मा में मन को लगाओ तब भी मन परमात्मा बनेगा, और परमात्मा को मन में लाओगे तब भी मन परमात्मा बनेगा। मन ही राम झाले, मन ही राम झाले, प्रवृत्ति ग्रासुनी कैसे निवृत्ति सी आले। मन को यदि परमात्मा में लगाओगे तो मन परमात्मा बन जाएगा, मन परमात्मा बन जाएगा तो फल क्या है, मन की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जहां प्रवृत्ति की समाप्ति है वही तृप्ति है, ध्यान रखो, उस तृप्ति का नाम ही निवृत्ति है, उस तृप्ति का नाम ही पूर्णता है, और प्रवृत्ति का अर्थ ही होता है अपूर्णता, प्रवृत्ति का नाम ही होता है दुख, और प्रवृत्ति समाप्त होने का अर्थ ही होता है सुख, आनंद। मन की प्रवृत्ति समाप्त हो गई तो बुद्धि आनंद से भर जाती है, बुद्धि तृप्त हो जाती है, बुद्धि पूर्ण हो जाती है, और बुद्धि पूर्ण हो गई तो आपका जीवन पूर्ण हो जाता है, फिर अपूर्णता नहीं रहती है, फिर जन्म मृत्यु नहीं है, उसी का नाम तो मुक्ति है, मुक्ति कोई गांव नहीं है, वैकुंठ जैसे आप लोग समझते हैं कि आकाश में कोई वैकुंठ टंगा हुआ होगा, है ना, जैसे तारे टंगे हुए हैं ना, तारों को देखते हैं कि नहीं, ऐसा ही आप कल्पना करते हैं कि ऐसा ही कहीं

वैकुंठ भी होगा, वहां मुझे जाना है, ये कल्पना है। सब लोग आपके अंदर है, जो ब्रह्मांड में है वो सब पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए उसकी कल्पना छोड़ो, अपने अंदर खोजो। बुद्धि यदि पूर्ण हो गई तो आपका जीवन पूर्ण हो गया, समाप्त तो हो गया आपका जन्म मृत्यु। मोक्ष मरने के बाद नहीं होता है, हां स्वर्ग मरने के बाद होता है ऐसा लोग कहते हैं, देखा किसी ने भी नहीं है, है ना? देखा है किसी ने स्वर्ग? स्वर्ग स्वर्ग देखने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए मरना होता है, है ना? परंतु मुक्त होने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, मरना ही समाप्त होता है। कितना अंतर है। मुक्त होने के लिए मरना नहीं होता है, मृत्यु ही समाप्त होती है। मरण माझे मरुनि गेले, तुकाराम कहते हैं, मदते केले अमर, मेरी मृत्यु ही क्या हो गई, मर गई। मृत्यु मरने का अर्थ होता है प्रवृत्ति की समाप्ति, ध्यान रखो। क्या मृत्यु की समाप्ति का अर्थ होता है प्रवृत्ति की समाप्ति, और प्रवृत्ति की समाप्ति का अर्थ ही होता है भक्ति, समझ रही ना? और भक्ति का अर्थ ही होता है तृप्ति, पूर्णता, मुक्ति। या भक्ति होगी वही मुक्ति होगी, मुक्ति भक्ति को छोड़कर के रह नहीं सकती है, समझे ना? इसलिए हमें सावधानी रखना है। बहुत जीवन चला गया, थोड़ा रहा है, अब थोड़े जीवन में हमें ऐसा अभ्यास करना है हम भोग की ओर न जाए, योग की ओर जाए। इसका अर्थ नहीं कि योगा की क्लास में आ जाना है, योग योगा अलग है, योग अलग है, समझ? ये योगा है, हाथ पैर की कसरत है, शरीर का व्यायाम है। योग बाहर नहीं होता, योग अंदर होता है, समझ? परमात्मा का और बुद्धि का जो संबंध जुड़ जाए उसका नाम है संयोग, सम्यक योग है वो, सम्यक योग। बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ने का अभ्यास करो, मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास करो। भोगों में लगाने से नहीं, सुविधाओं में लगाने से सुखी नहीं हो जाओगे। सुविधाएं सुख नहीं देती है, सुविधा केवल सुख भासवाती है, देती नहीं है। सुविधाओं से कोई भी आज तक सुखी नहीं हुआ है, और ना हो सकता है। तुकाराम ने, या इसमें नामदेव का एक प्रमाण है, 18 भार वनस्पति फली फूली ओलती, 22 पोखरणी नदी गंगा वहाती, जा घरी कुल स्त्रिया राज्य राजीव संपत्ति, हे सुख सांडोनिया काशिया योग सेविती। ये सुविधाएं हैं, ये योग नहीं है। इसलिए कहने का तात्पर्य है, आज का जो ये शिवरात्रि का महापर्व है, अपने मन को कल्याण के मार्ग पर ले चलाओ, बुद्धि को उसमें लगाओ तो हमारा कल्याण है। अर्थात मन को और बुद्धि को, बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान हो और मन में परमात्मा का भजन हो। क्या? अर्थात मन में परमात्मा का चिंतन हो।
और बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान हो, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। क्या? बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान हो, और ये ध्यान रखो, ज्ञान परिच्छिन्न नहीं होता है, ज्ञान कोई रूप वाला नहीं होता है, गुण वाला नहीं होता है, अंदर का निश्चय होता है, निश्चय अनुभव होता है, अनुभव। बुद्धि में परमात्मा का अनुभव होना चाहिए और मन में परमात्मा का भजन होना चाहिए। ये दोनों की एकता हो जाए तो इंद्रिया अपने आप ही उनके पीछे चलती है। इंद्रिया तो गुलाम है, मन की गुलाम है, मन जहां चलेगा वहां इंद्रिया भी अपने आप जाएगी। मन में यदि परमात्मा का भजन होता तो इंद्रिया परमात्मा को ही देख सकती है, परमात्मा को ही सुन सकती है, परमात्मा को ही चख सकती है, ये ध्यान रखो। और मन में यदि परमात्मा का चिंतन नहीं है, परमात्मा का भजन नहीं है, तो इंद्रिया भोगों का, विषयों का सेवन करती है। आपको अनुभव करना होगा। काय खातो आम्मी कासिया सांगाते लागते है मुखी कया नैनो कैसे। अर्थात मन में यदि भजन है तो बाहर हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे इसका कोई अर्थ नहीं होता है, समझ ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में भजन को लाओ और अपना कल्याण करो। मन में भजन रखो, बुद्धि में ज्ञान रखो, ये दोनों साथ हो जाए तो निश्चित हमारे जीवन में तृप्ति मिलेगी, पूर्णता मिलेगी, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा और जीवन में सफलता होगी।

0: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Anandanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: लेकिन वो बड़ा प्रसन्न था. अन्य राजा जिसको पकड़ा जाता था वो बेचारे रोते थे कि अब तो एक साल के हैं, इसलिए राज्य में रहकर के वो कोई विकास भी नहीं कर पाते थे. अब जो है उसे जब बनाया गया तो वो बड़ा प्रसन्न था. ले गए पुराने राजा को, समुद्र में डुबा दिया गया और उसको ला करके सिंहासन पर बैठा दिया गया. वो जब सिंहासन पर बैठा तो उसने देखा कि मेरे से पूर्व जो राजा हुए ये किस प्रकार के थे, इन्होंने कुछ भी नहीं कर पाया. इस राज्य में इतना कोष विद्यमान है, इतना खजाना विद्यमान है, इस राज्य को उन्नत किया जा सकता है, सारी जनता को सुखी बनाया जा सकता है और स्वयं भी सुख को प्राप्त किया जा सकता है. वही कैसे राजा थे, ऐसा उसने विचार किया, देखा धन को, फिर उसने कार्य करना शुरू किया. उसने उस कोष को निकाला और वो लोग तो चिंता में ही मर जाते थे, न तो जो है उसका विकास कर पाते थे न कुछ, है ना. अब जो है उसने जो है उसको निकाला, जगह जगह उसने उद्योग धंधे लगाए, कच्चा माल बनवाना शुरू किया, कच्चे को पक्का बनवाना शुरू किया, कृषि का विकास किया और जो है सेना को भी बढ़ाया और सेना के लिए जो है साधन भी बढ़ाए. इस प्रकार से उसने जनता के लिए बहुत कुछ किया और अच्छा जो है उस टापू का राज उसने चलाया. सारी जनता उसे भगवान की तरह मानने लगी. और इतना ही नहीं किया, ये तो उसने किया जनता के लिए, देश की सेवा की. फिर उसने सोचा जब इतना सब कुछ है, जनता का अब सुख पूरा हो चुका है, तो अपने लिए भी कुछ करना चाहिए. अब जब उसने ये विचार किया अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, तो उसने भी जो है बढ़िया और है राजभवन था बढ़िया बनवाया, सुरक्षित राजभवन बनवाया, सेना एना आदि बढ़ा ली और सब ये सब काम भी किए. लेकिन वहीं पर दूसरा काम उसने क्या किया, वहीं राज्य में एक सरोवर था, वो सरोवर जो है गंदा पड़ा हुआ था और उसमें जो है गहराई भी नहीं रह गई थी, सारा कचरा भरता रहा, गंदा भी हो गया और गहराई भी नहीं रह गई, गंभीरता भी नहीं रह गई. तो उसने क्या किया, उस कोष से निकाल करके जो है उस धन को उसने उसमें लगाया, उसकी गहराई करवाई, उसके कचरे को बाहर कराया और उसने जो है जल को भरवाया. और जब वो गहरा हो गया, जल भर गया, स्वच्छ हो गया, साफ हो गया, फिर उसने सुंदर योग्य प्रवीण उस्तादों को बुलाया और उनको बुला करके उसने उसमें सरोवर में तैरना सीखा. क्या किया, उसने तैरना सीखा और तैरना सीखा तो बढ़िया उस्ताद बुला ही रखे, इसलिए डुबकी लगा करके नीचे नीचे चलना और जो है फिर ऊपर तैरना, लेट के तैरना, खड़े होके तैरना, नाना प्रकार से जो तैरने की कलाएं हैं वो सारी कलाएं उसने सीख ली. जब सारी कलाओं से निपुण हो गया तो इतने में जो है उसका समय भी पूरा हो गया. एक वर्ष का ही समय निश्चित था, वहां का नियम था. अब जब समय आया तो जनता जो है अब दुखी होने लगी, कहा अब तो ये राजा हमारे हाथ से चला जाए. लेकिन वो खुश था, उसके चेहरे पर कोई मिलानता नहीं थी, कोई सिकुड़न नहीं थी, वो प्रसन्न था क्योंकि उसने अपना कार्य व्यवस्थित रूप से किया था. अब जो है जनता दुखी थी, जब राजा हमारा जिसने इतना सुख दिया वो चला जाएगा, लेकिन कर क्या सकती थी, वहां का नियम था। अब नियम के अनुसार जो है पहल की सजाई गई, उसे बैठाया गया और नए राजा का चयन किया गया, लेकिन वो रो रहा था पहले ही से। अब ले जाकर के समुद्र के किनारे पहुंचे तो वहां पर उससे कहा गया कि भाई इनको है सारी सत्ता संभालो। उसने कहा जो नया राजा बनने वाला था उससे कहा ये लो चाबियां, और सारे वही खाते दिए, और उसने उससे कहा कि आप जैसे मैंने राज्य चलाया है ठीक इसी प्रकार से आप भी राज्य चलाओ। हैं बोलते तो हैं हम लोग, दादा चरत श्रेष्ठ तत्त देवी तरोजना सयद प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तन, लेकिन वो अनुवर्तन नहीं होता। अब जो है ये उसने कहा और कहा कि मैंने सारी रूपरेखा या सहारा बाय लॉज बनाकर के रख दिया है कैसे राज्य को चलाना है, ये सब जो है खजाने की कोठरी में ही हमने रख दिया है, ये चाबियां लो, जैसे मैंने राज्य को चलाया है ठीक इसी प्रकार से आप राज्य को चलाएंगे तो आप प्रजा को भी सुखी कर सकेंगे और आप भी सुखी हो सकेंगे। और ऐसा कहकर के वह प्रसन्नता पूर्वक उस पाल की नौका में बैठ गया। जनता ने जो ले जाकर के गहरे समुद्र में जाके उसे छोड़ दिया, डुबा दिया, वो डुबकी ले गया। उधर से वो जो लोग है नौका को वापस ला करके नए राजा को उन्होंने बैठाया, उसका अभिषेक किया और शंख नाद घेरी आदि बजाने लगे। और जब देखा तब तक वो डुबकी लगाए हुए चलता रहा, फिर धीरे से निकल के बाहर आया जल के ऊपर, उसने देखा अब चले गए तो तैरता रहा। लेकिन इससे पहले ही उसने एक काम और किया था, ये है बुद्ध सिंह की बुद्धिमत्ता। वो क्या, उस राज्य में रहते रहते ये सब काम भी किया, लेकिन ये सब काम करते हुए ये लौकिक उन्नति करते हुए उसने क्या किया था, उसने देखा कि उन्नति होने पर भी कोष तो और वृद्धि को प्राप्त हो रहा, अब इस कोष का क्या प्रयोग होना चाहिए, क्या सदुपयोग होना चाहिए, तो उसने समुद्र के पार एक दूसरा टापू था, उस टापू पर जमीन खरीदी और उस टापू पर जमीन खरीद करके वहां एक सुंदर महल बनवाया, वहां जो अयोग्य वृक्ष समझे उनको कटवा दिया, जो योग्य वृक्ष समझे उनको रखा और नवीन वृक्षों को वहां लगवाया, और सुंदर जो है भवन बनवा करके और सुंदर जो है सैनिकों को वहां स्थापित किया और सुंदर मकानों को बनवा करके जनता को वहां बसा दिया और राज्य का आधा खजाना वहां पहुंचा दिया। और ये सब तैयारी उसने पहले ही कर रखी थी। जब ये सब उसने कर रखा था तो तैरते हुए जब गया तो पहले से वहां तैनात थे लोग, जैसे ही किनारे पहुंचा तो लोगों ने उसे निकाल लिया और सुंदर गर्म जल से स्नान आदि करा करके और उस टापू पर उसे अभिषिक्त कर दिया। वहां का वह राजा बन गया और वहां का राजा बन गया और वहां के विकास को देख करके उस टापू की तरफ जो जंगली राज्य थे वहां के राजाओं ने भी जो छोटे छोटे राज्य थे उसे स्वीकार कर लिया कि ये बहुत प्रवीण है, उसकी शरण में आ गई और एक सम्राट बनकर के वहां पर उसने जो है फिर राज्य चलाना प्रारंभ किया और सारे जंगली राजाओं को जो है सुखी बना दिया। ये तो है क्या उदाहरण दृष्टांत। इसका तात्पर्य क्या, इसका तात्पर्य ये संसार ही टापू है, ये संसार ही टापू है और इस टापू पर हम लोग भी आए हैं, है? सारे प्राणी आए हैं राज्य करने के लिए, तो वो कितने समय के लिए आए, वो भी निश्चित समय है, इसके बाद जो है आप राज्य कर सकते नहीं। और ये मर्त्य लोक ही वह है, क्या है का यही समुद्र है, इसमें आपको डूबना ही पड़ेगा, कोई भी चाहे तो बच सकता नहीं। अब जो है यदि हम ऐसा विचार कर लेते हैं कि वास्तव में इस शरीर के अंतर्गत एक एक देवता बैठा हुआ है, एक एक अवयव के अंतर्गत कितनी सामर्थ्य है, कितना बड़ा खजाना है, इतना बड़ा खजाना अन्य किसी के पास नहीं। इसलिए बुद्धि प्रधान समस्त योनियों में समस्त प्राणियों में यदि बुद्धि की प्रधानता है तो किसमें है? एक मानव में। और यदि मानव इसको नहीं कर पाता है तो इससे बड़ी उसकी हानि कुछ नहीं। आप श्रुतियों में सुनते रहे, इह चेद वेदी अथ सत्यवस्ति। तो अब जो है ऐसा संकेत वहां पर दिया गया तो ये वर्तलोक है। अब यदि हम शुद्ध मन को, शास्त्र की बात को स्वीकार करते हुए और अपने स्वरूप को समझते हैं तो इसलिए गीता भगवान ने क्या कहा, अर्जुन इस हृदय की दुर्बलता का त्याग कर, है उत्तिष्ठ और उठ और कर्म कर। लेकिन कैसे कर्म कर तो वो सब रूपरेखा भगवान ने बतला दी। फिर वो कर्म तुझे लिपायमान नहीं कर पाए। ये सारा का सारा गीता का रहस्य भगवान ने दिया और इसी को श्रुति कहती, खुर्वन्दे वे कर्माणि जीविषे कतम क्षमा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते। ये सारे संकेत की, और केवल शास्त्र ही नहीं, जिन ऋषियों ने इसे हृदयंगम किया, उन ऋषियों ने जिन्होंने शास्त्र को कभी देखा भी नहीं, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की। कबीरदास कौन से पढ़े लिखे थे, लेकिन जीवन में अनुभव आया, उस तत्व को समझा तो उन्होंने भी क्या क्या, क्योंकि नियम तो ये है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शिवाश न भुक्तम खियते कर्म कल्पकोट, ये नियम है। लेकिन ये शास्त्र क्या कहता कि कर्म लिपायमान नहीं करेगा, और भगवान ने भी कह दिया नमाम कर्माण लिपंती, है ना। तो कैसे लिपायमान नहीं करेगा, कैसे वो दुख हमारे सामने नहीं आएगा। और कबीरदास ने भी लिख दिया, और कबीर ने लिखा काजल की कोठरी में कितनो हु सयानो जाए, पर एक लीख काजल की लागे है पे कोयले का व्यापार करो। और चाहो कि हम कोयले की कालिक से रहित हो जाएंगे तो ये संभव नहीं, क्योंकि वो रेख उड़ेगी आपको जो है, कालिक तो लगेगी। अब जो है कबीरदास ने कहा नहीं, इसका भी उपाय है। कहा क्या उपाय है, तो कहने लगे कबीरा रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रम रहा दूजा कहां समाए। जिसकी सिंदूर की चर्चा कर दी, और सिंदूर का रूप क्या है, केवल लाल रंग को हम देख करके सिंदूर कहने वही नहीं, सिंदूर की परंपरा क्या थी। सिंदूर जो निर्मित होता था तो सिंदूर में दो वस्तुएं होती, एक तो लाल रंग होता और दूसरा पारा, दूसरा क्या होता पारा। लेकिन कैसा पारा होता, सोधा हुआ। सोधने का मतलब उसके अंदर जो विकार है उसकी निवृत्ति कर देना ही शोधन है। तो पारा का स्वभाव क्या है, पारा का अपना निजी गुण क्या है, चंचलता। पारा कैसा होता है, चंचल, स्थिर नहीं रहता। लेकिन जब उसको शोध दिया जाता है तो वही पारा स्थिर हो जाता है, और ऐसे पारे को, और फिर उस पारे में स्थिरता और भारीपन भी होता, तो जब चंचलता समाप्त हो गई तो वो स्थिर हो जाता है। और उस पारे से युक्त जो लाल रंग होता, लाल रंग अनुराग का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक, और उससे जब युक्त होता है तो वो होता है सिंदूर। इसलिए सीमांत के सवे से इसका भी तात्पर्य क्या था, सिंदूर लगाने का मतलब क्या था, मन भी चंचल है, उस चंचल मन को स्थिर कर देने का नाम ही क्या था। ये सब हमारे यहां परंपराएं थी, ये वैश्य परंपराएं जो है इनके उद्देश्य हैं, इनके तात्पर्य हैं, लेकिन उन परंपराओं को हम समझते ही नहीं। आजकल शिक्षा भी हम अवग्रहण करते हैं जो स्वतः सिद्ध है, लेकिन जो शिक्षा जो है सीखनी चाहिए वो शिक्षा को तो हमने हटा दिया, और वो शिक्षा ले आए जो स्वतः सिद्ध है। तो स्वतः सिद्ध की सिद्धि करने की क्या जरूरत, सिद्धि तो उसकी करनी है जो हमारे लिए अज्ञात, जिसको हम सीखने में असमर्थ हैं, ऐसी शिक्षा को सीखना चाहिए। तो अब जो ये परंपराएं थी, खैर उसकी चर्चा फिर अलग चली जाए। तो यहां संकेत जो किया गया, तो जैसे चंचल मन आदि की स्थिरता होना और अनुराग का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक, वहां पर एकता हो जाना, तो ये सब संबंध बतलाए गए। तो वैसे ही जब मानव के जीवन में यह चंचल मन एक जगह स्थिर होता है और कहां प्रेम करता है, तो कहां परमात्मा, वह निर्णय कर लेता है, अपने मन के विकार को दूर कर लेता है, जब मन का विकार दूर होता है तभी मन निश्चित सत्य संकल्प वाला होता है, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, वो सत्य संकल्प तभी ले पाएगा। इसलिए उस अर्यमा से किया गया कि हमारे मन का शोधन तू ही कर सकता है, हमारे मन को विकार जो है उनको निवृत्त तू कर सकता और वो बल दे सकता है, जिस बल के द्वारा हमारे अंदर वो विवेक शक्ति आएगी और विवेक शक्ति आएगी तो बुद्धि में वह निश्चय आएगा और उस निश्चय के द्वारा हम सुख को प्राप्त कर लेंगे और हम लौकिक उन्नति भी कर सकेंगे और पारलौकिक उन्नति भी कर ले सकेंगे। जैसे उसने उस टापू पर रह करके ये सब कुछ कर दिया ऐसे ही, और तब क्या है फिर हमारी डिवो देने पर भी मृत्यु नहीं होगी। हैं, स्तुति तो कहती है न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवनीयन्ते, तो क्या मतलब उसके प्राण कहां गए, होता तो जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। गाते हैं लोग है? और अनाड़ी भव सागर से है तो उनको तो डूबना पड़ेगा, तो आर्य अनार्य ये शब्द होते हैं। तो यहां पर भी आर्य मन अर्य मन, वह अर्य मन माने श्रेष्ठ मन सुसंस्कृत मन और अर्थात निर्विकार मन, तो ऐसे निर्विकार मन वाला निर्विकार संकल्प वाला ऐसा जो देव है वह देव ही हमारे अंतर्गत रहने वाले उन विकारों को जब निवृत्त करेगा तो हमारा शमन होगा, हमारे विकारों का शमन होगा, शमन विकारों का होगा तो निर्विकार स्वरूप हमारा प्राप्त होगा और हमें सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए यहां संकेत किया कि शन्नो भवत्वर्यमा हे अर्यमा न मेरे लिए शम भवतु, शमन करने वाले हो अर्थात वह बल वह शक्ति हमें प्रदान करो जिससे हमारा मन जो है विकारों से रहित हो, स्थिरता को प्राप्त हो और जो है स्वच्छता को प्राप्त हो, और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो मन जो संकल्प करेगा तो शुद्ध संकल्प करेगा, और जब मन शुद्ध संकल्प करेगा तो बुद्धि उसका निर्णय लेकर के और उसके अनुसार अनुवर्तन करेगी, और जब बुद्धि उस वृत्ति पर स्थिर हो जाएगी और बुद्धि के स्थिर होने पर फिर क्या होगा का उस ज्ञान की प्राप्ति होगी, प्रागतिक हमारी स्थिति हो जाएगी, उन्नत हमारी स्थिति हो जाएगी, और ये जब स्थिति हो जाएगी तो हमारे जीवन की जो कुटिलता है वो समाप्त हो जाएगी, सरलता हमारे जीवन में आ जाएगी, और सरलता आ जाएगी तो कुटिलता क्या है, कुटिलता का मतलब है छिपाव। फिर हमारे जीवन में जो छिपाव है, छिपाव किसको लेकर के है, अज्ञान को लेकर, तो अज्ञान जब आता है तो हमारे अंदर अहम लाता है, और अहम के आने पर मम आता है, और मम के आने पर कामनाएं होती हैं, और कामना के होने पर राग द्वेष होता है, और राग द्वेष होने पर अयोग्य संबंध होता है, और अयोग्य संबंध को लेकर के ही जन्म मरण होता है, और इसी जन्म मरण को लेकर के सारे दुख आ जाते हैं। तो इसलिए ऋषि प्रार्थना करता है कि हे अर्यमा अर्थात श्रेष्ठ मन सुसंस्कृत मन वाले हैं बल से युक्त जो आप हैं वो हमें क्या करें, ऐसा बल दें कि हम भी अपने मन को निर्विकार बना सकें। तो इस प्रकार से यहां ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, इसी प्रकार से आगे संकेत करते हैं सन्न इंद्रो बृहस्पति, आगे कहा इंद्र न शन हे इंद्र तुम जो है मेरे लिए क्या करो, कल्याण करो, शमन करो मेरे विकारों का। तो इंद्र क्या है, इंद्र यहां पर बल का देवता है, शौर्य का देवता है, वीर पराक्रम का देवता है, स्वामित्व वाला है। तो इंद्र के अंदर वह स्वामित्व है, इंद्र के अंदर वह पराक्रम है, इंद्र के अंदर वह बल है। तो ऐसे इंद्र से, अब इंद्र शब्द का कहीं ईश्वर पर कर लिया तो यहां तो भी वही तात्पर्य है, और देवता संबंधी भी लिया, और यहां पर जो है शरीर को लेकर के यथा है पिंडे तथा ब्रह्मांडे करके संकेत ही किया जाता, तो उसको समझ ही लेना आप लोग सब सुसंस्कृत तो हो ही। तो यहां पर जो है ऐसे इंद्र से बलशाली इंद्र से प्रार्थना कर, तो इंद्र से क्या मांग रहे, जब अर्यमा तक पहुंच गई शुद्ध संकल्प निश्चय वाली बुद्धि निश्चयात्मका वृत्ति हो गई तब अब क्या चाहिए, तो कहा बल चाहिए। कहें बगल बल के भी सुख मिल सकता नहीं, बल की भी आवश्यकता। अब बल चाहिए तो बल कौन सा चाहिए, शस्त्र बल, धन बल, जन बल, क्या ये बल चाहिए? ये नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म बल, ये भी सब बल, विद्या बल, ये सब बल हैं, लेकिन कहा इन बलों से काम नहीं होगा। इसलिए भक्ति पक्ष में भी जहां मानस में तुलसीदास ने सरल भाषा में लिख दिया, जहाति पहाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, है भक्तहीन नरसो है कैसे, और जिन जम वारिद बिन जल भारिद पेखिए जैसे, ये संकेत कर दिया, वही यहां संकेत है। तो बल कौन सा चाहिए? ये सब बल काम आने वाले नहीं। तो कौन सा बल हो? आपने जिसका निश्चय किया, उस निश्चय में ही आपकी स्थिरता हो जाए, उसी में रमण होने लगे। आत्मनिर्भर, आत्मना, संतुष्टता, ये सब इसी के प्रतीक है, ये जो कहा गया। तो अब जिसका निर्णय लिया है, उसी निर्णय में हमारी जो है स्थिति हो जाए, तो उस बल का नाम। इसलिए श्रुति कहती नायम आत्मा बल ही ने न लभ्य। तो कौन से बल की बात की श्रुति? तो वो बल क्या है? इसलिए बलस्य भावः इति बाल्यः, बलस्य भावः इति बाल्यः, बल का भाव जिसमें रहे उसी को क्या कहते हैं? बालक। बालक किसे कहते हैं? का जिसमें बल हो। कौन सा बल है बालक में? बालक के अंदर कौन सा बल है? बालक के अंदर बल है विधि निषेध से रहित होना। इसलिए भगवान क्या कहते? त्रैगुण्या विषया वेदा, निस्त्रैगुण्या भव अर्जुन, तीनों गुणों से परे हो जा। और जब परे हो जाएगा तो कहने लगे ऐसा जो है व्यक्ति है तो पथि विचरता को विधि को निषेधा, उसके लिए कोई विधि और निषेध नहीं रखता। ये संकेत, वही संकेत यहां इतने अंश में, बालक का उदाहरण इतने अंश में दिया कि उस बालक में विधि और निषेध की रहता होती। तो क्या विधि और निषेध? तो देखो सामान्य रूप से समझो, शास्त्र कहता है, वेद कहता है स्नात्वा भुंक्ते, स्नान करके ही हमें क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। इस वेद का उद्घोष है, वेद का आदेश है, वेद की शिक्षा। तो हमें स्नान करके भोजन करना चाहिए, लेकिन ये तो वेद का नियम हो गया, वेद की विधि हो गई। आप हरिद्वार पहुंच गए और जनवरी के महीने में पहुंच गए और रात्रि के 2 बज रहे, ठंडी ठंडी हवा चल रही, आपके पास में है छोटा सा बच्चा 5-6 महीने का, और 2 बजे बच्चा रोने लगा, रोने लगा तो भूखा है। अब भूखा है तो आप क्या करेंगे? हाँ, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, कहोगे नहीं, वेद की आज्ञा है, स्नात्वा भुंक्ते, स्नान करके भोजन करना चाहिए। तो क्या करोगे? बच्चे को नहलवाओगे। ठंडी पड़ रही है, जनवरी का महीना और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, और उस हरिद्वार की है, बंबई में हो तो चल भी जाए, लेकिन कहां हो? हरिद्वार। तो क्या करोगे? उस बच्चे को नहलवाओगे नहीं, किंतु क्या करोगे? उसे दूध पिलाओगे। वहां पर ये वेद की विधि काम नहीं है। तो बालक पर ये वेद की विधि लागू नहीं, अन्य के लिए लागू है, एक नागरिक होने के पश्चात फिर तो लागू है, लेकिन उससे बालक पर वो विधि लागू नहीं होती। और मान लीजिए मां जो है 10,000 रुपए की साड़ी पहन करके और भोजन करने बैठी हुई, बालक गोद में है, बालक गोद में है और वो भोजन कर रही, और बालक को मल का वेग आया और उस बालक ने मल का विसर्जन कर दिया, तो मां क्या उसे दंडित करेगी? हैं? मां उस बच्चे को दूसरे को पकड़ाएगी, बच्चे की सफाई करेगी, थाली को हटा देगी, है साड़ी बदलेगी और फिर बच्चे को गोद में लेकर के वहीं। तो ये बल किसमें है? उस पर कोई विधि और कोई निषेध लागू नहीं। मनुष्य के लिए तो है कि आपको जो है दिशा विधान आदि जो है एकांत देश में करना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए, ये सब विधान है, लेकिन बालक के लिए ये कोई विधान नहीं है। तो बालक कैसा? विधि और निषेध से परे। तो ये विधि निषेध से परे होना, ये बल आ जाए। और ये बल कब आएगा तो इसकी भी चर्चा है। तो इंद्र से प्रार्थना वही कर रहे। अब जो है सनत सनंदन सनत कुमार को आपने सुना, इन लोगों को कैसा बतलाया? ये भी विधि और निषेध से परे, इसलिए इनको क्या कहा गया? नाम ही रखा गया क्या? सनत कुमार। सनत शब्द का अर्थ क्या है? शाश्वत, अनवरत, निरंतर है, त्रिकालावाद्य कह दो उसी को, तो वो तो हो गया सनत। और कुमार, कुत्सित मारयत इति कुमार, जो कुत्सितता को जिसने मार दिया उसे क्या कहते हैं? कुमार। कुमारो पंच हायनः, पांच वर्ष के बालक को भी क्या कहते हो? कुमार कहते हो। तो जहां कुत्सितता नहीं है, जहां कोई कामना नहीं है, उसे कहते कुमार। ऐसे सनत कुमार हो। अब इनकी चर्चा क्या है और कैसे उनमें बल है, इसकी चर्चा फिर कल बतला देंगे।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
1: ஓம் சிவாய நம. நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் அடுத்த நிகழ்ச்சி சிவ கீர்த்தனைகள். இதில் நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் பாடல் நன்றுடையானை இறந்துடவும் திருஞான சம்பந்தர் திருப்பதிகம். பாடிப்பவர் ஆனத்தூர் சகோதரர்கள். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமன்.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

नमो निषङ्गिन इषु धिमत इषु धिमते निषङ्गिने नमो नमो निषङ्गिन इषु धिमते निषङ्गिन इषु धिमत इषु धिमते निषङ्गिने निषङ्गिने।

0: नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

नमः ओम धनवान्तकाय नमः ओम चतुर्वक्त्राय नमः ओम चक्रधराय नमः ओम पंचवक्त्राय नमः ओम परंतपाय नमः ओम विश्वस्यायतनाय नमः ओम वर्याय नमः ओम मंदारुजन वत्सलाय नमः ओम गायत्री वल्लभाय नमः ओम गार्ग्याय नमः ओम गायकानुग्रहोन्मुखाय नमः ओम अनंतरूपाय नमः ओम एकात्मने नमः ओम स्वस्तरवे नमः

ओम गोष्ठ्याय नमः, ओम गोपरिपालकाय नमः, ओम शुष्क्याय नमः, ओम हरिद्याय नमः, ओम लोप्याख्याय नमः, ओम सूर्म्याय नमः, ओम पर्ण्याय नमः, ओम अनिमाद्भुवे नमः, ओम वर्णशद्याय नमः, ओम प्रत्यगात्मने नमः, ओम प्रसन्नाय नमः, ओम परमोन्नताय नमः, ओम शीघ्रियाय नमः, ओम शीभ्याय नमः, ओम आनन्दाय नमः, ओम क्षयद्वीराय नमः, ओम क्षराक्षराय नमः, ओम पाशिपादक

ओम गुह्याय नमः, ओम गुह्यगी समभिष्टुदाय नमः, ओम कृतांतकृतये नमः, ओम क्रियाधाराय नमः, ओम कृतिने नमः, ओम कृपणरक्षकाय

0: Shivaya. You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Chit Chaturvidam, Char Chaitanya ho gaye na? Brahma Chaitanya, Ishwar Chaitanya, Kutastha Chaitanya, Jeev Chaitanya. Char Chaitanya. अब जीव चैतन्य के लिए अंतकरण की आवश्यकता है, कूटस्थ चैतन्य के लिए अंतकरण की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर चैतन्य के लिए माया की आवश्यकता है, ब्रह्म चैतन्य के लिए माया की आवश्यकता नहीं है। देख लो, स्पष्ट है ये। ब्रह्म चैतन्य माया के बिना भी वह ब्रह्म चैतन्य है, अंतकरण के बिना भी वह ब्रह्म चैतन्य है, कूटस्थ के बिना भी वह ब्रह्म चैतन्य है। इसीलिए ब्रह्म चैतन्य के लिए और किसी की होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ईश्वर होने के लिए माया की आवश्यकता है और जीव होने के लिए अंतकरण की आवश्यकता है। या दूसरी भाषा में, पंचदशी की भाषा में समझना चाहो, ईश्वर होने के लिए शुद्ध सत्व की आवश्यकता है। पंचदशी की भाषा में समझना चाहो, ईश्वर होने के लिए शुद्ध सत्व की आवश्यकता है और जीव होने के लिए मलिन सत्व की आवश्यकता है। मलिन सत्व न हो तो जीव हो ही नहीं सकता है। इसलिए वेदांत की यह दृष्टिकोण है, जीव हो और वह जीव शुद्ध हो, शुद्ध रूप में रहे, यह संभव ही नहीं है। वेदांत का यह निश्चित है, जीव हो और वह शुद्ध हो, यह संभव नहीं। जीव को चाहे शुद्ध करने के लिए तो उसकी उपाधि जो मलिन सत्व है उसको हटाए बिना जीव शुद्ध नहीं होगा, और मलिन सत्व हटाते ही जीव जीव ही नहीं रहेगा, तो शुद्ध जीव की कल्पना कहां से आ गई तुम्हारी? शुद्ध जीव की कल्पना कहां से आ गई? जीव की जीवपना रहे तब ना उसकी शुद्धता की बात आवे। जीव की जीवपना उपाधि बाधित होते ही वो तो ब्रह्म हो गया, तो जीव की जीवपना ही नहीं रहती है। और जीव को जीव बनाने के लिए उपाधि चाहिए, उपाधि फिर शुद्ध उपाधि जीव की नहीं हो सकती, और शुद्ध उपाधि होते ही वो फिर ईश्वर हो जाएगा। यदि उपाधि को शुद्ध करोगे तो वो फिर जीव नहीं होगा, फिर ईश्वर हो जाएगा वो, क्योंकि शुद्ध उपाधि ईश्वर का है, मलिन उपाधि जीव का है। यही तो जीव और ईश्वर में अंतर का कारण है। यूं तो मूल रूप में चेतना में जीव और ईश्वर में अंतर नहीं है, उपाधि की भिन्नता से जीव और ईश्वर में भिन्नता है। दोनों की उपाधि बात कर देते हैं तो जीव ईश्वर की एकता है, वहां शुद्धता भी नहीं मलिनता भी नहीं। कहां? दोनों की एकता में शुद्धता भी नहीं मलिनता भी नहीं। और जब दोनों को अलग करते हो तो ईश्वर में शुद्धता, जीव में मलिनता, और उसी मलिनता के चलते जीव अनेक प्रकार के पराधीनता, सुख दुखता का अनुभव, जन्म मृत्यु आदि की प्राप्ति, और जीव को उस उपाधि की बात करना ही वेदांत का प्रयोजन है। अस्ति प्रकाशत इति व्यवहार प्रवर्तते तच्चास्तित्वं प्रकाशत्वं कस्मिन् अर्थे प्रतिष्ठितं किं तेषु तेषु सर्वे वार्थेषु किं वा सर्वात्मनि ईश्वरे। अब प्रश्न हुआ कि ईश्वर तो ईश्वर है, तो ईश्वर क्या है महाराज? बोले सर्वात्मा जो है वो ईश्वर है, सर्वात्मनि ईश्वरे, यानी समष्टि उपाधि वाला चैतन्य ईश्वर है। तो सर्वात्मा कहने का मतलब समष्टि उपाधि, समष्टि उपाधि का मतलब हो गया आपकी जो उपाधि है वो भी ईश्वर की उपाधि है, क्योंकि आपकी उपाधि व्यष्टि उपाधि है, उसकी उपाधि समष्टि उपाधि है। ये अंतर है। तो सबकी उपाधि होने के कारण सब में वो विद्यमानता है, सबकी उपाधि होने के कारण वह सभी में विद्यमान है। जैसे छोटे घड़ा, बड़ा घड़ा, कुल्हड़, कसौरा, प्याले, दीपक, जो कुछ भी बनाओगे वे सब अलग अलग नाम, अलग अलग रूप होंगे, लेकिन सब के सब मिट्टिका से बनी हुई होने के कारण मृत्तिका सर्वात्मा हो गई। मृत्तिका क्या हो गई? सर्वात्मा हो गई। सर्वात्मा माने घड़े की भी आत्मा, कुल्हड़ की भी आत्मा। बात समझ गए कि नहीं? घड़े की भी आत्मा और कुल्हड़ की भी आत्मा, दीवक की भी आत्मा, कसौरे की भी आत्मा, सुराही की भी आत्मा, हर चीज की आत्मा मृत्तिका हो गई कि नहीं? देख लो। इसीलिए वो जो मृत्तिका सर्वात्मा, इसी तरह परमात्मा सर्वात्मा, क्योंकि वो सबकी सत्ता है। सभी को सत्ता दिया हुआ होने के कारण वह सर्वात्मा है, और सभी को प्रकाशित करने के कारण वह सर्वभाषक है, सर्वावभाषक है। वो ईश्वरत्वम च जीवत्वम सर्वात्मत्वम च कीदृशम। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, और ईश्वर सर्वात्मा किस कैसे है, और जीव भी सर्वात्मा कैसे बन सकता है? देख लो, एक बात ख्याल रख लेना। जीव की अल्पात्मता, अल्पशक्तिता, ये बनी हुई है। समझ गए कि नहीं? जीव की अल्पात्मता, अल्पशक्तिता, ये बना हुआ है, स्वरूपता नहीं है। स्वरूपता ये अल्पात्मता और अल्पसत्ता, अल्पज्ञता, ये स्वरूप में नहीं है, लेकिन उपाधि के चलते हैं, इसलिए बना हुआ है। और इसको सर्वात्मा होने के लिए जो बना था उसका बिगड़ना जरूरी है। जीव जब तक नहीं बिगड़ेगा तब तक वो सर्वात्मा नहीं होगा। अब तुम क्या कहोगे इसको, बिगड़ना कहोगे कि सुधरना कहोगे? तो हम तो कह देंगे बिगड़ना है। जीव सुधरेगा कि बिगड़ेगा? जीव की जीवपना, उपाधि बिगड़ गई तो बिगड़ गया। वो बिगड़ गया तो क्या, जीव बिगड़ गया? बोलो। तो घट सुधर कर सकोरा बनेगा कि घट बिगड़ कर सकोरा बनेगा? घट फूटेगा ना तो घट कपाल बनेगा ना, तो घट कपाल जो बनेगा, घड़ा फूटने के बाद उस घड़े के टुकड़े होते हैं ना, उसको घट कपाल बोलते हैं संस्कृत भाषा में, नैयायिकों की भाषा में। घट ध्वंस ही घट कपाल के लिए कारण है। घट फूटे बिना घट कपाल बनेगा? तो घड़ा बिगड़ेगा कि सुधरेगा? घड़ा सुधर कर घटकपाल बनेगा कि घड़ा बिगड़ कर घटकपाल बनेगा? तो हम तो ये कहेंगे कि उपाधि का नाश होना ही तो जीव का बिगड़ना है। उपाधि का बने रहना, जीव सुधरना। जीव सुधरना का मतलब है यह है, उपाधि का त्यागना नहीं है। हां, इतना ही जरूरी है कि उस उपाधि में तमोगुण की अधिकता के चलते हम ये कह दिया करते हैं कि जीव बिगड़ गया। सत्वगुण की अधिकता के चलते हम ये कह दिया करते हैं कि जीव सुधर गया। बात समझ में आई कि नहीं? दारू पीने के चलते हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बिगड़ गया। दूध और फल के रस पीने के चलते हम कहते हैं कि वो व्यक्ति सुधर गया। तो क्या वो दूध और रस पीने लग जाए तो व्यक्ति ही नहीं रहेगा? व्यक्ति तो रहेगा, व्यक्ति तो रहेगा, लेकिन वो सुधरा हुआ व्यक्ति रहेगा। और दारू पीने लग जाएगा तो व्यक्ति ही नहीं रहेगा, रहेगा लेकिन कौन सा रहेगा? बिगड़ा हुआ रहेगा। उपाधि उपाधि तो सुधरा हुआ व्यक्ति में भी है और बिगड़े हुए में भी है। मनुष्य के रूप में आइडेंटिफाई करोगे कि नहीं, बिगड़े हुए को, दारू पीने वाले को, ये मनुष्य है। जनगणना में दारू पीने वाले को पशु के कोटि में गणना करते हो कि मनुष्य के कोटि में गणना करते हो? है, गणना में तो मनुष्य में करोगे ना। अच्छा, दूध और फल के रस पीने वाले को गणना तो मनुष्य के रूप में करोगे। तो दूध पीने लग गया तो मनुष्यता खत्म हो गई, ये बात नहीं। और दारू पीने लग गया तो भी मनुष्यता खत्म हो गई, ये बात नहीं है। गणना तो मनुष्य की कोटि में होगी। अब उसकी उपाधि खत्म हो जावे तब उसको न मनुष्य में गणना कर पाओगे, न सुधरे हुए मनुष्य के रूप में गणना कर पाओगे, न बिगड़े हुए मनुष्य के रूप में, मनुष्य के रूप में ही गणना नहीं होगी। इसी तरह उपाधि सर्वथा बाद होते ही जीव जीव के रूप में गणना नहीं हो सकती है। तो क्या फिर? तो परमात्मा ही है, इसलिए जीव ब्रह्म की एकता वेदांत में। अब ये किसी लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, इसलिए वह जीव स्वतंत्र मानते हैं। परमात्मा जिस तरह स्वतंत्र पदार्थ है, चैतन्य है, उसी तरह जीव स्वतंत्र व्यक्ति है, चैतन्य है। और भक्ति न करने के कारण ये बिगड़ा हुआ है, भक्ति कर जाए तो सुधरा हुआ है, इतना ही है। दारू पीने के कारण बिगड़ा हुआ है, दूध पीने लग जाए तो सुधर जाएगा, और क्या। विषय सेवन में आसक्त तो हो गया तो दारू पीने लग गया तो भगवान से दूर हो गया, और भक्ति रस पीने लग गया तो दूध पीने लग गया भगवान के नजदीक हो गया। तो भगवान के नजदीक पहुंचना, भगवान के सुख आनंद का उसको भी आभास मिलने लग जाएगा, उसकी छटा मिलने लग जाएगी, तो वहां भी आनंद होगा। तो हम जैसे कहते हैं क्या मदिरा पीते हो, दूध पी लो, क्या आनंद आता है, इसी तरह भक्ति में आनंद आता है। हम तो ये कहते हैं कि दूध ही पीना न पड़े, ये विचार करो ना भाई है? दूध पीने के चलते ही, दूध के लोभ में आते ही वो मदिरा में पहुंच गया। वो भोक्ता बनना ही जीव की बिगड़ने की प्रक्रिया है, कर्ता बनना ही जीव की बिगड़ने की प्रक्रिया है। और जीव की कर्ता और भोक्ता भाव से निकल जाने का एक ही उपाय है कि उन उपाधियों के, जिन उपाधि से वह कर्ता बना था और जिन उपाधियों से वह भोक्ता बना था, उस उपाधि से वह अपना संबंध कट कर लेवे, हटा लेवे। ये उपाधि से मेरा कोई संबंध नहीं है। आजी मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, थोड़ी चर्चा चल रही थी सुबह, हाँ, तो कहे कि महाराज भूल गए, बहुत भूलने की आदत पड़ गई। तो आप लोगों के भी भूलने की आदत है ना, है? ये तो सभी की है भूलने की आदत। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो उनको थोड़ा सा असहज लगा होगा ये वाक्य, तो हमने उनकी फिर व्याख्या कर दी, उनकी असहजता निकल जाए। हम किस अभिप्राय से कह रहे हैं कि भूलना ईश्वर की कृपा है, किस अभिप्राय से कह रहे हैं? तो उसकी फिर हमको ही व्याख्या करनी पड़ी, स्पष्टीकरण, नहीं तो वो अन्यथा लेकर महाराज जी से सुबह सुबह दर्शन करने आए और आशीर्वाद ले चाहते थे, खूब याद हो जावे, ऐसे आशीर्वाद मिल जावे। महात्मा ने कहा कि भूलने की है तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, यही आशीर्वाद है। तो उसका स्पष्टीकरण करना भी जरूरी होता है। तो हमने कहा उनको समझाया, देखो भाई, हम इतने ही चाहते हैं कि तुम अपने को नहीं भूलना, बाकी दुनिया को भूल जाओ तो कोई नुकसान नहीं है। तो हमने कहा तुम्हारी पत्नी तुमको क्या कहती है, है? पति कहती है ना, तुम मेरे पति हो, यही कहती है कि नहीं? और ये बात तुम भूल गए कि नहीं? पत्नी ने तुम्हारे बारे में जो कहा तुम मेरे पति हो, ये बात तो तुम नहीं भूल रहे हो ना? भूल रहे हो? अच्छा, तुम्हारी बेटी ने तुम्हें कहा कि तुम मेरे पापा हो, है? भूल गए? नहीं भूले हो? तो तुम्हारे बाप ने कहा कि तुम मेरा बेटा है, तो भूल गए? नहीं भूले हो? तुम्हारा भाई ने कहा कि तुम मेरे भाई हो, तो वो भी नहीं भूले हो? तो संसार के लोगों ने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कहा है, बहन ने भाई कहा, बेटी ने पापा कहा, पत्नी ने पति कहा, बाप ने बेटा कहा है, मित्र ने मित्र कहा, ये सब कुछ तो भूल नहीं रहे हो तुम। तो इन लोगों का कहना तुम नहीं भूल रहे हो, तो फिर हमारा कहना क्यों भूल रहे हो? कोई प्रेमपुरी आने वाले महात्मा ने तुमको पति कहा? ताल बोलो है। किसी भी महात्मा ने तुम मेरे पति हो कहा? तुम मेरी पत्नी हो कहा? नहीं कहा ना। प्रेमपुरी में आने वाले कोई भी महात्मा ने तुम मेरे बेटे हो भी नहीं कहा होगा, मेरे भाई हो भी नहीं कहा होगा, मेरा मित्र हो नहीं भी कहा, ये कुछ नहीं कहा। अच्छा भाई, प्रेमपुरी में आने वाले महात्माओं ने तुम्हें क्या कहा तुम्हारे बारे में? कि तुम कूटस्थ हो, यही ना कहा है सभी ने है? सभी लोगों ने, हर महात्माओं ने, तुम्हें महात्माओं ने यही कहा है कि तुम कूटस्थ हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम कूटस्थ हो, अकर्ता हो, अभोक्ता हो। अब महात्माओं का कहना तुम भूल जाते हो, और पत्नी का कहना मैं तुम मेरे पति हो तो वो भूलते नहीं हो, तो ये तुम्हारी बदमाशी है और कुछ नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि जैसे और सब कुछ भूल रहे हो, धीरे धीरे ये संसारी लोग जो तुम्हें कह रहे हैं वो भी भूल जाओ, और महात्मा का कहना मत भूलना, बस इतना ही है। महात्माओं ने तो तुम्हें स्त्री हो तो नहीं कहा है ना? कहा है महात्माओं ने प्रेमपुरी आश्रम में तुम्हें, तुम स्त्री हो, तुम महिला हो, तुम जनाना हो, ये तो नहीं कहा है, है? और महात्माओं ने तुम पुरुष हो ये भी नहीं कहा है। अब फिर जब तो फिर संसारियों ने कहा कि तुम स्त्री हो, तो तुम उसको भूलते नहीं हो कि अंतिम मरते दिन तक तुम कहीं भी लिंग लेखने के प्रसंग में तुम हमेशा मैं स्त्री हूं, जिससे भी परिचय दो तो मैं स्त्री हूं, मैं महिला हूं, मैं फीमेल हूं, मैं मेल हूं, मैं पुरुष हूं, ये कहते रहते हो। और महात्मा कहते रहते हैं तू कुटस्थ है, तू सत है, तू चित है, तू आनंद है। तो ये भूल जाना ही ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो हम तो ये कहेंगे कि अभी तक संसारियों ने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा उसका भूल जाओ। हाँ, तो अपने बारे में मत भूलना, शरीर के बारे में भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरीर के बारे में स्त्री पुरुषता भूल जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, परंतु अपने को भूलते हुए शरीर को भी भूल जाओगे तो फिर व्यवहारिक सत्ता में बड़ा नुकसान आ जाएगा, तो फिर वो पागल है कहेंगे, है ना? लेकिन अपने को याद करते हुए व्यावहारिक सत्ता में के सब भूल जाओगे, शरीर शरीर का धर्म आदि सब कुछ भूल जाओगे, शरीर से संबंधित संबंध को भूल जाओगे, तो तुम्हें पागल नहीं कहेंगे, तुम्हें समझदार कहेंगे। सुखदेव जी ने क्या किया? सुखदेव जी ने क्या किया? वेदव्यास जी क्या कहते हैं? तुम मेरे पुत्र हो, है ना? पुत्रेति तन्मयतया, तुम मेरे पुत्र हो, बेटा बेटा बेटा, कौन कह रहा है? वेदव्यास जी। सुखदेव जी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कि हां मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम मेरे बाप हो, है? कोई प्रतिक्रिया आई सुखदेव की तरफ से? नहीं आई। सुखदेव जी को तो ये पता ही नहीं कि मैं किसका बेटा हूं और मेरा कौन बाप है, ये दोनों चीज सुखदेव जी भूले बैठे हैं कि नहीं है? मैं किसी का बेटा हूं, कोई मेरा बाप है, ये दोनों चीज सुखदेव जी भूल बैठे हैं।

क्या बात है? बोले महाराज, उसकी समदृष्टि होते ही हमारी भी समदृष्टि हो गई। देख लो, उनकी समदृष्टि होने पर हमारी भी समदृष्टि हो गई, और जहां आपकी विषम दृष्टि है इसलिए हमको भी विषम दृष्टि करना पड़ा। आपकी विषम दृष्टि होने के चलते हमको विषम दृष्टि करना पड़ा। आप ये छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा, उसमें वो भाव नहीं है, स्त्री पुरुष का भाव नहीं है, तो उस बच्चे के सामने आप भी उस भाव में बंधते नहीं हो, बंधते हो है? छोटा दूध पीता हुआ बच्चा, उस बच्चे में स्त्री पुरुष का भेद का भाव नहीं रहता है, तो आप भी उस बच्चे के सामने उस भेद का परित्याग कर देते हो, करते हो कि नहीं? उसके सामने नंगे होने में आपको कोई संकोच होगा? दूध पीते हुए बच्चे के सामने नहीं होता, भेद खत्म हो गया। उसने भेद नहीं किया तो आप भेद नहीं करोगे, और वही जवान जब होता है तो उसके पास सामने भेद आता है तो फिर आप भी भेद करने लग जाओगे, है? पांच वर्ष पहले उसके सामने आपने भेद नहीं किया था और पांच वर्ष के बाद आप खुद भेद करने लग जाओगे। कारण क्या? तो उसमें भेद आ गया तो आप भी भेद करोगे। तो ईश्वरत्वम च जीवत्वम, जीवपना क्या है, कैसे हुआ ये जीव? जानीया तत्कथम जीव किम तत् ज्ञानस्य साधनम्। जीव अपनी पारमार्थिक स्वरूप को, सर्वात्म भाव को, सर्वसत्ता भाव को, सर्वचित्ता भाव को वो कैसे जाने, किस प्रक्रिया से जाने? क्या जीव हमेशा जीव ही रहेगा कि जीव की ये जीवपना अनित्य है? तो वेदांत की दृष्टि में जीव की जीवपना अनित्य है, क्योंकि उपाधि अनित्य है, इसलिए जीव की जीवपना अनित्य है। जानी या तत्कथम जीव किम तद ज्ञान से साधनम, उस ज्ञान का साधन क्या है, कौन से ज्ञान के द्वारा जीव अपने को सर्वात्म रूप में जान पाएगा, उसकी उपाधि का बाद होगा। कौन से ज्ञान के द्वारा? घट ज्ञान के द्वारा कि पट ज्ञान के द्वारा? घट ज्ञान पट ज्ञान ये जो अपराविद्या है, उस अपराविद्या के द्वारा जीव अपने आप को सर्वात्म रूप में नहीं जान सकता। जीव को अपने आप को सर्वात्म रूप में जानने के लिए, निश्चय करने के लिए पराविद्या की आवश्यकता है। फलव्याप्ति के रूप में जीव अपने आप को सर्वात्म रूप में नहीं जान सकता है, वृत्ति व्याप्ति के रूप में ही जीव अपने आप को सर्वात्म रूप में जान सकता है। तो ये उपाय भी बताना है, प्रश्न यहां उपस्थापित की गई है। जानीयात तत्कथम जीव किम तद् ज्ञानस्य साधनम्, ज्ञाना तस्य फलम किंच। अपने आप को कुटस्थ और सर्वात्म भाव को जानने के बाद उस ज्ञान का फल क्या होगा, उपलब्धि क्या होगी? हाँ, एक महात्मा वेदांत पढ़ने लग गए, महाराज हमको वेदांत पढ़ाइए। तो हमने कहा कि क्या करोगे वेदांत पढ़कर? बोले आपसे वेदांत पढ़ेंगे तो फिर हम भी कथाकार बनेंगे। अच्छा भाई, तुम कथाकार बनकर क्या करोगे? बोले कथाकार बन जाएंगे तो बढ़िया खाने को मिलेगा, सब लोग नमस्कार करेंगे, पीने को मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। अब कथाकार न बने, जब तक कथाकार नहीं बने तो कहीं जाओ आश्रमों में कमरा नहीं मिलता है, कथाकार बन के जाओ तो रहने के लिए कमरा बढ़िया। कथाकार बनते ही मान सम्मान सब कुछ, और कथाकार नहीं बने तो फिर खड़िया पलटन है। तो हम ये चाहते हैं कि हम भी कथाकार बने, और इतने प्रयोजन के लिए तुम कथाकार बनना चाहते हो और उसके लिए वेदांत तो पढ़ना चाहते हो, तो ये तो कोई उत्तम चीज नहीं है। उसका फल क्या है? ज्ञान तस्य फलम किं स्यात् एकत्वम च कथम भवेत्। ज्ञान का फल है एकता। ज्ञान का फल क्या है? एकता, एकत्व। हाँ, विभेदता ये ज्ञान का फल नहीं है। जीवात्मा परमात्मा की जो एकता ही ये ब्रह्म विद्या का फल है, प्रयोजन है। सर्वज्ञ सर्वकर्ता च कथम आत्मा भविष्यति।

0: ये जीवात्मा सर्वज्ञ सर्वकर्ता कैसे होगा? तो बोले छोटी उपाधि को छोड़कर बड़ा उपाधि ग्रहण करता है तो सर्वज्ञ सर्वकर्ता बनेगा। बात समझ गए कि नहीं? छोटी उपाधि को छोड़कर बड़ा उपाधि को ग्रहण करता है तो सर्वज्ञ सर्वकर्ता बन जाएगा, और उपाधि को छोड़ जाएगा तो बहिर्कुटस्थ असंग हो जाएगा, वो सर्वज्ञ सर्वकर्ता नहीं बनेगा, वो केवल ज्ञप्त्री मात्र रहेगा। ये वेदांत की प्रक्रिया है। ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं होगा और सर्वकर्ता नहीं होगा, ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वकर्ता होगा, जीव सर्वज्ञ नहीं होगा और सर्वकर्ता भी नहीं होगा, जीव अल्पज्ञ अल्पकर्ता होगा। जीव अपनी छोटी उपाधि बड़ी उपाधि में मिला देता है तब जीव भी सर्वज्ञ सर्वकर्ता बन जाता है बड़ी उपाधि के चलते, और उपाधि को छोड़ देता है तो सर्वकर्ता सर्वज्ञ सर्वकर्ता नहीं बनता है, केवल ज्ञप्त्री मात्र रहता है, ज्ञान मात्र रहता है, चिन्ह मात्र रहता है, आनंद मात्र रहता है, अद्वितीय रहता है। सर्वज्ञ सर्वकर्ता च कथम आत्मा भविष्यति शिष्यं प्रति इत्थम। इस तरह यह वेदांत विचार के सारे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का जो सार है वो शिष्य नहीं, यहां गुरु के सामने प्रश्न के रूप में, विचारणीय प्रश्न के रूप में रखा है, और इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के माध्यम से जो कुछ भी विचार किया जाएगा यहां उपस्थापित, ये सारे विकल्प के बारे में ही विचार किया जाएगा। पृच्छम पृच्छन्तम् भक्तमारभते गुरुः, ऐसे शिष्य जब इस तरह पूछता है तो उसके उत्तर देने की इच्छा से आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी इस तरह उपदेश करना आरंभ करते हैं। उपदेश का आरंभ विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, ये उपदेश का आरंभ कल से मूल श्लोक की व्याख्या। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Enadi Nada Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakto, aaj hum sunenge aur ek Nayanmar ya sant ki kahani, jinka naam hai Enadi Nathar. ये तमिल प्रदेश में भक्ति आंदोलन के एक सामाजिक संत थे। भक्ति समाज के इस दौर में यह देखा जाता है कि तमिल प्रदेश में छोटी जाति के कई व्यक्तियों के आदर्श जीवन के कारण उन्हें संत होने का गौरव मिला है। ईल वंश के लोग प्राय व्यापार करते थे और अपने युद्ध कौशल के लिए विख्यात थे। इसी ईल वंश में चोल क्षेत्र जो कि दक्षिण भारत में है, उसमें एनादिनाथ का जन्म हुआ। राजाओं और वीर युवकों को तलवार चलाने की शिक्षा देना उनका काम था। उनके पूर्वज भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिया करते थे। वे युद्ध कला से संबंध विविध क्षेत्रों में सैकड़ों वीरों को हरा चुके थे। उनका चचेरा भाई अतिशूरन था। कुल परंपरा से अतिशूरन भी अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण देता था, लेकिन एनादिनाथ की योग्यता और लोकप्रियता को देखकर वे ईर्ष्या से जलते थे। उसने एनादिनाथ को अपने मार्ग से हटाने की ठान ली। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक योजना बनाई और एक दिन एनादिनाथ के द्वार पर चल पड़े और उन्होंने ये एनादिनाथ को ललकार कर कहा, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने की के वंशानुगत अधिकारों का निर्णय शक्ति परीक्षण से होता है। हम दोनों अपने अपने शिष्यों सहित मुकाबला कर लें। इस द्वंद्व में जो विजयी हो उसको सभी आयुध विद्यालयों का प्रधान होने का अधिकार मिलेगा। इनादिनाथ ने इस आवाहन को स्वीकार किया और निश्चित दिन और स्थान पर अपने शिष्यों समेत पहुंच गए। अतिशूरन भी अपने योग्य शिष्यों के साथ उस स्थान पर पहुंच गए। दोनों दल परस्पर टकराए, भयंकर मुकाबला हुआ, रक्त की नदियां बह चली। अंत में अपने योद्धाओं को पूरी तरह से पराजित होते हुए देखकर अतिशूरन युद्ध से भाग खड़ा हुआ। उनके अनेक योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जो शेष रहे वे युद्ध क्षेत्र से इसी भांति भाग गए जिस प्रकार से सत्य ज्ञान होने पर मनो कामनाएं, क्रोध, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि दूर भाग जाते हैं। अब अतिशूरन को ज्ञात हुआ कि वह इनादिनाथ को कभी पराजित नहीं कर सकते। वह व्याकुल हो पड़े और उन्होंने एक षड्यंत्र की रचना कर डाली। वह जानते थे कि इनादिनाथ के मन में शिव चिन्ह विभूत और विभूतधारी शिव भक्तों के प्रति अपार श्रद्धा की भावना थी। उसने इसे अपने षड्यंत्र का आधार बनाया। उसने पुनः इनादिनाथ को द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित किया और उनसे एकांत में कहा कि व्यर्थ में रक्तपात के स्थान पर शिष्यों को बलि नहीं बनाना चाहिए, परंतु दोनों का निर्णायक संघर्ष ही उचित है। निर्धारित स्थान और दिन पर इनादिनाथ और अतिशूरन पहुंच गए। इनादिनाथ ने अपने परिवार तथा शिष्यों तक को इस द्वंद्व की सूचना न दी। युद्ध प्रारंभ हुआ। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में हीरो जड़ी लकड़ी की ढाल बनाकर अतिशूरन ने अपना मुख छिपाए रखा। जिस क्षण इनादिनाथ का हाथ प्रबल हुआ और वह आक्रामक मुद्रा में आए तो प्रवंचक अतिशूरन ने अपनी ढाल नीचे कर दी। इनादिनाथ विस्मय पूर्वक खड़े हो गए क्योंकि अतिशूरन के मस्तक पर शिव की पवित्र विभूत शोभायमान हो रही थी। उन्होंने विचार किया, शिव चिन्ह धारण करने वाले की हत्या पाप है, पर यदि मैं तलवार फेंक दूं तो अतिशूरन को किसी निहत्ते को मारने का पाप लगेगा। यह विचार करके वे तलवार हाथ में रखे रहे और अतिशूरन को अपनी हत्या करने का अवसर दे दिया। भक्त के हृदय की भावनाओं को जानते हुए शिव ने उसी क्षण उन्हें दर्शन देकर उन्हें अनुग्रह प्रदान किया। वे कैलाश चले गए। इस कथा में वर्णित इनादिनाथ और इससे को हम मामूली व्यक्ति नहीं समझ सकते। शत्रु के क्षण मात्र में ही यमलोक भेजने की शक्ति रखते हुए भी और अतिकूल शत्रु को क्षण मात्र में ही यमलोक भेजने की शक्ति और उसके अनुकूल स्थिति होते हुए भी उन्होंने इस कारण शत्रु को मनमानी करने दी क्योंकि वह शिव वेशधारी है। इस अद्भुत कृत्य के लिए इन्हें पागल समझना भारी भूल होगी। एक श्रेष्ठ आदर्श को जीवन लक्ष्य बनाने के बाद संत लोग उस सिद्धांत में समझौता नहीं करते। उनकी प्रकृति में यह नहीं है, इसलिए ये सच में महान और उच्च कोटि के नायनमार्य संत थे। इनके बारे में सुंदर, जो कि बहुत बड़े कवि भी थे और संत थे, ने कहा है, मैं इनादिनाथ के दासों का भी दास हूं। हम इनका अनुकरण नहीं कर सकते, परंतु एक अद्भुत आदर्श के रूप में इन्हें स्मरण जरूर कर सकते हैं। इनादिनाथ सच में शिव के एक प्रबल और उच्च कोटि के भक्त थे। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
4: Om Namah Shivaya.

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
1: हमको घाटा होता है तब फिर हमारे दुश्मन को समझ में आता है कि ईश्वर जो करता है सही करता है ना, यही है ना। और हम क्या कहेंगे, ये ईश्वर का ये क्या किया है ईश्वर, ये भी कोई करने का ढंग है क्यों जी? और हमारा दुश्मन क्या कहता है, ईश्वर जो करता है सही करता है। तो मंत्री ने कहा कि ईश्वर जो करता है सही करता है। राजा को गुस्सा आया और उस मंत्री को जेल में बंद कर दिया। इसका दिमाग खराब हो गया है, बंद कर दिया जेल में, मंत्री पद से सस्पेंड कर दिया, बंद कर दिया। बोल, तेरे को मंत्री पद से भी हटा दिया और जेल में बंद कर दिया, अब वर्षों जेल में सड़ना पड़ेगा, अब बोल ईश्वर क्या कर रहा है। तो मंत्री का कहना था ईश्वर जो करता है सही करता है। उस अवस्था में भी मंत्री ने क्या कहा, ईश्वर जो करता है सही करता है। राजा ने सोचा कि इसका दिमाग ठीक से खराब हो गया है, पहले मेरी उंगली कटी तो कहता था ईश्वर जो करता है, अब खुद जेल में बंद हो गया, मंत्री पद से सस्पेंड हो गया, फिर भी बोलता है ईश्वर जो करता है सही करता है। इसका दिमाग ठीक से खराब हुआ है, तो बंद ही रखो जेल में। मंत्री तो वही माला लिया और ओम नमः शिवाय करना शुरू कर दिया। ईश्वर जो करता है सही करता है ना। जब मंत्री पद में था, बहाल वाला ड्यूटी में था, तो माला लेकर बैठकर जप नहीं कर पाता था, किसी भी समय राजा बुला सकता था, तो अब तो राजा बुलाएगा नहीं ना उसको, पुरुषोत्तम मास में खूब जप करेगा वो। ईश्वर जो करता है सही करता है। अब राजा ने दूसरे मंत्री को नियुक्त किया, वर्षों उसको जेल में बंद कर दिया। एक वर्ष के बाद जब वो राजा उस नया मंत्री को, नवनियुक्त मंत्री को लेकर जंगल गया शिकार खेलने, तो वहीं शिविर लगाकर बैठकर शिकार खेल रहा था, एक दिन भटक गया जंगल में। राजा भटक गया, कई बार सुनी है आप लोगों ने कहानी। उसी जंगल में एक तांत्रिक भैरव साधना कर रहा था, कपालिक। तो उस तंत्र साधना के अंतिम में नरबलि देना है, अपने चेलों को कहा कि जाओ बढ़िया नर खोज के लाओ, भगवान को हमारे देवता को बलि चढ़ाना है, उसके बाद हम जो चाहें वो ठीक हो जाएगा, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जाओ। सेवक लोग गए तो राजा जंगल में भटका हुआ था, उसी को पकड़ लिया, ले आए महाराज, चलो तैयार करके भैरव के आगे सिर गर्दन झुकाकर रखो, हम तलवार लेकर आते हैं। तांत्रिक अंदर गया, मंत्र पढ़ता हुआ तलवार, नंगे तलवार लेकर आया और राजा भैरव के आगे गर्दन तान कर बैठा हुआ है, क्योंकि उसको बलि चढ़ाना है, प्रतिकार कर नहीं सकता है वो किसी से, राजा एकला है, अकेला है, और उसके तांत्रिक के चेले हट्टे कट्टे पांच सात हैं, क्या प्रतिकार करेगा वो। जब राजा आया तो उसको गर्दन में तलवार प्रहार करने से पहले उसके अंग आदि प्रत्यंग को देखना शुरू किया, बलि खंडित तो नहीं है कोई अंग प्रत्यंग यदि विकल हो, खंडित हो, तो ऐसा व्यक्ति बलि नहीं चढ़ता। तो कान ठीक थे, नाक ठीक थे, सब कुछ ठीक था, ऊपर तो हाथ देखने लगा तो उंगली कटी हुई थी। उसने कहा कि ये हमारे देवता को, भैरव को बलि नहीं चढ़ेगा, क्योंकि पहले से कटी हुई है। कहां से लिया है? ले जाओ इसको, ले जाके छोड़ दो, दूसरा खोज के लाओ। अच्छा महाराज, हमको क्या पता, छोड़ दिया तो उसकी जान बची। एक वर्ष पहले परमात्मा ने, ईश्वर ने उसकी उंगली कटवा कर एक वर्ष के बाद गर्दन बचाई। ये कौन समझेगा बोलो? उस राजा को समझ में आया था पहले उंगली कटी थी तब? ईश्वर ने ये जो उंगली काटी है मेरे गर्दन को बचाने के लिए उंगली काटी है, ये किसी को समझ में आता है? हैं? जब उंगली कटती है तो तब समझ में आएगा किसी को? एक वर्ष बाद अब राजा को समझ में आया कि मंत्री जो कह रहा था ठीक है, वाह ईश्वर क्या बढ़िया, उंगली कटाकर गर्दन बचाया। ईश्वर तू जो करता है ठीक करता है, अपने बारे में तो समझ में आ गया राजा को। अब आकर मंत्री को पूछा, है मेरे बारे में तो ईश्वर ने जो किया है वो ठीक किया, आज की घटना ये है भाई, एक वर्ष पहले उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरा गर्दन कट जाता, भगवान ने उंगली कटवाकर गर्दन बचाया, इसलिए भगवान को धन्यवाद दे रहा हूं मैं। मेरे बारे में तो ये समझ में आया भाई, अब तुझे जो जेल में बंद किया था, नौकरी से हटा दिया था, उस समय तूने कहा था कि ईश्वर जो करता है ठीक करता है, अब एक वर्ष से तू जेल में बंद पड़ा है, बोल तेरे बारे में ईश्वर ने क्या अच्छा किया, तेरे बारे में ईश्वर ने क्या अच्छा किया मुझे बताओ। बोले महाराज, ईश्वर बहुत ही दयालु है, एक वर्ष पहले तुमने मुझे सस्पेंड करके जेल में बंद न किया होता, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जंगल में जाता तुम्हें खोजते हुए, और तुम तो उंगली कटे हुए होने के कारण बच जाते हैं, गर्दन किसकी कटती, मेरा तो उंगली कटा नहीं था। हैं? वो तांत्रिक के चेले किसको पकड़ते फिर विकल्प में? मुझे पकड़ते, और क्योंकि मेरा कोई अंग भंग हुआ नहीं था तो गर्दन किसकी कटती? मेरी कटती। ईश्वर ने एक वर्ष पहले से ही मेरी गर्दन बचाने की तैयारी की है। उसने जेल में बंद ना किया होता तो आज तुम्हारी जगह मेरे गर्दन कट जाते। उंगली काटकर तुम्हारे गर्दन बचाया, जेल में बंद करके, नौकरी से हटाकर मेरे गर्दन बचाया। ईश्वर कभी गलत नहीं करता, ये भाव क्या है? परितोष, ये संतोष का भाव है, परितोष का भाव है। परमात्मा का भक्त, भगवान का भक्त कभी भी उसके लवों में परमात्मा के प्रति, किसी की प्रति भी शिकायत नहीं रहती। समझे कि नहीं? भगवान के भक्तों में, परमात्मा के भक्तों में किसी के भी प्रति, परमात्मा की तो बात छोड़ दो, किसी के भी प्रति शिकायत नहीं रहती। इसलिए शायद किसी कवि ने कहा ना, मुझे वो कविता याद आ गई, आ गई थी शिकायत लबों पे, आ गई थी शिकायत लबों पे, लब माने वोट, शिकायत करने के लिए शिकायत अंदर से वोट तक तो आ गई थी, लेकिन करते किससे? वो शिकायत करेंगे तो करेंगे किससे, बोलो है? तुम जो शिकायत करो, तुम्हारी शिकायत को सुनकर समाधान करने वाला कौन है? हैं? कौन समाधान कर देगा? क्योंकि जिसको तुम शिकायत सुना रहे हो उसी के ओठों में हजार शिकायत भरे पड़े हैं, वही हजार शिकायतों के गठड़ी ढो के चल रहा है। बोलो, कोई छाती में हाथ रख के कहता है, कह सकता है, संसार में किसी के प्रति मेरी कोई शिकायत नहीं है, कह सकता है? हैं? जब ड्राइवर समय में नहीं आता है तो क्या करते हो? हैं? कहते क्या हो? तो क्यों नहीं आए समय में? तनख्वाह पूरी ले लेता है और काम करने में क्या कहोगे बोलो? और तुम ड्राइवर की शिकायत करोगे? ड्राइवर तुम्हारी शिकायत करता है, नहीं करता है? हैं? वो भी शिकायत करता है, गधे की तरह काम लगाता है रात दिन, वो भी अपनी शिकायत करता है। सबके सब ऐसे ही है भाई। बहू सास की शिकायत, सास बहू की शिकायत, बेटा बाप की शिकायत, बाप बेटे की शिकायत, अड़ोसी पड़ोसी का शिकायत, पड़ोसी अड़ोसी का शिकायत है, जनता नेताओं की शिकायत, नेताएं जनता पब्लिक की शिकायत। ले जी, आ गई थी शिकायत, करते किसे? विचार किया उसने, जो स्वयं हजारों शिकायत कर लेकर घूम रहा है उसके सामने शिकायत करना बेकार है कि नहीं, बोलो? हैं? इसलिए करना ही बेकार था। फिर क्या किया तुमने महाराज? तो वो कभी बोलता है, तो शिकायत करना छोड़कर हमने क्या की? दर्द पीकर चल पड़े तो चलते रहे, दर्द पीकर चल पड़े तो चलते रहे, हार कर बैठ जाते तो बैठना बेकार था। है? अरे शिकायत करके हार करके बैठना तो बैठना ही बेकार है ना, बैठकर क्या उपलब्धि होगी बोलो? अरे चलोगे तो कुछ न कुछ उपलब्धि होगी, नहीं तो बैठकर क्या उपलब्धि होगी? घुटने में दर्द है तो घुटना है तो दर्द होगा ना घुटने में दर्द है, अब घुटने में दर्द है करके घर में बैठे रहोगे तो उपलब्धि क्या होगी बोलो? उपलब्धि क्या होगी, बेनिफिट क्या होगा? दर्द है तो है, तो मलते हुए लकड़ी हाथ में लेकर आइया ऊह आह करते हुए प्रेमपुरी आओगे, कुछ तो सुनने को मिलेगा, उपलब्धि हुई कि नहीं बोलो? दर्द पीकर चल पड़े तो चलते रहे, लेकिन हार कर बैठ जाते तो बैठना बेकार था। इसीलिए जिंदगी हार कर बैठने के लिए भी नहीं है, वाणी शिकायत करने के लिए नहीं है। भक्तों की वाणी शिकायत करने के लिए नहीं है, और भक्तों की जिंदगी दान दो, भक्तों की जिंदगी हार कर बैठने के लिए नहीं, हर परिस्थिति में पुरुषार्थ करने की है, उद्यम करने की है, साधना करने की है, और भक्तों की वाणी शिकायत करने की नहीं है। पी जाना है परिस्थिति को, पी जाना। पीने का अर्थ होता है कंप्रोमाइज करो, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। अरे उम्र भी हो गया, घुटना भी, कब तक, कितना ये शरीर, इतने बड़े शरीर को ये घुटना कब तक ढोता ढोता फिरेगा? क्या 40 साल की उम्र में तुमने शिकायत की थी घुटना दुख रहा है? हैं? कितने काम किया था बोलो। अब भाई अब तक इस शरीर को ढोते ढोते इस घुटने को 70 साल हो गया, कब तक ढोएगा भाई? तुम वजन बढ़ाते जा रहे हो और कह जा रहे हो घुटने को कि दर्द होता जा रहा है, है? घुटना दर्द होता जा रहा है तो वजन घटाते जाओ। वजन घटाते नहीं हो और शिकायत करते हो कि घुटना दुख रहा है, घुटना दुख रहा है। कब तक ढोए वो घुटना बेचारा? है तो जिंदगी हारने के लिए नहीं, वाणी शिकायत करने के लिए नहीं। इसीलिए भगवान के भक्ति रूपी बादल कादंबनी कहां रहती है? महेश पद पुष्करम आवसंती, परमात्मा के चरण रूपी आकाश में भक्ति रूपी बादल विचरण करती है। आकाश को छोड़कर बादल अन्यत्र नहीं विचरण करते, भक्ति परमात्मा के चरण को छोड़कर अन्यत्र आश्रय नहीं ले सकती है। जैसे आकाश की बादल वृष्टि करते हैं यानी पानी बरसते हैं, और भगवान के चरण की भक्ति रूपी बादल क्या बरसती हैं? परितोष वर्षति, संतोष की वृष्टि करते हैं। भक्तिर्महेश पद पुष्करमा वसंती कादंबनीव कुरुते परितोष वर्षम। तो क्या होगा महाराज उस वर्षा से? संपूरितो भवति यस्य मनस्तटाकः, तो भक्त के मन रूपी खेत भक्ति रूपी बरसात से बरसे हुए परितोष से संपूरिता, मन रूपी खेत में पानी लबालब भर जाए। बारिश यदि, बादल यदि वृष्टि करे तो किसान के खेत पानी से लबालब भर जाएगा कि नहीं? हैं? इसी तरह भगवान परमात्मा के चरण रूपी भक्ति रूपी बादल वृष्टि करे तो भक्तों के, परितोष रूपी संतोष रूपी वृष्टि करे तो भक्तों के मन रूपी खेत लबालब भर जाएगा। उपमा अलंकार, उससे क्या होगा महाराज? जैसे खेत पानी से लबालब भर जाए तब उस खेत में क्या होगा? तज्जन्म सस्यम अखिलम सफलम। सस्य माने धान, वनस्पति, अनाज, औषधि, समझे नहीं? बारिश होगी ना तब धरती में वनस्पति, सस्य माने घास, सस्य माने वनस्पति, सस्य माने धान, धान मक्का ज्वार आदि जो कुछ भी हो वनस्पति, पुष्णामी च औषधि सर्वासोम भूत्वा रसात्मकम। तब मनस्तटाक परिपूर्ण लबालब भर जाए तब मनुष्य का, भक्त का तज्जन्म सस्य, जन्म रूपी धान खेती फलीभूत होगा, सफल होगा, समझे कि नहीं? अनाज लगाओ, पानी नहीं है, तो खेत में लगाया हुआ अनाज क्या फलेगा? खेत में तुम वनस्पति लगाओ, फल के वृक्ष लगाओ, और उस वृक्षों को बारिश नहीं है, मल नहीं है, जल नहीं है, तो सूख जाएगा, फल लगेंगे उसमें? सफल होगा कि असफल होगा वो वृक्ष? अफला हो जाएंगे वो। इसलिए प्रार्थना करते हैं ना, पृथ्वी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः। एक जगह प्रार्थना किया ये मंत्र का, काले वर्षतु पर्जन्या पृथ्वी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मण संतु निर्भया। तो प्रार्थना करते समय कुछ दलित बैठे हुए थे, नाराज हो गए, ये मंत्र गलत है, ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। क्यों महाराज? बोले ब्राह्मण संतु निर्भया, ये देश में केवल ब्राह्मण लोग निर्भय रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं मंत्र से, तो गलत मंत्र है। क्या हम शूद्र लोग क्या भयभीत रहे हैं? ब्राह्मणा, ये ब्राह्मणों ने रचना की ये प्रार्थना, इसलिए अपने लिए इन्होंने कहा कि ब्राह्मणा संतु निर्भया, और हम लोगों के लिए तो प्रार्थना ही नहीं कर रहे, तो हम क्या संसार में हमेशा डरते हुए रहे समाज में? भाई आज योग दिवस बड़ा बवाल चल रहा था, हमारे धर्म में योग करते समय पहले 3 बार ओम का उच्चारण करना पड़ेगा, हम योग ओम का उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए ये योग ये हिंदुओं का है, हमारा नहीं है, हम नहीं करेंगे, बवाल खड़ा किया ना। ले जी, अब सूर्य नमस्कार हम नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा दूसरों को हम नमस्कार नहीं कर सकते हैं, तो सूर्य हिंदुओं के देवता हो सकते हैं, हम मुसलमान के देवता नहीं। अरे उल्लू हो, तुमको रोशनी दे रहा है कि नहीं है? बिना पैसा का रोशनी दे रहा है कि नहीं सूर्य? तो तुम ऐसे कैसे कह रहे हो कि भाई मुसलमान का देवता नहीं है? हाँ, मुसलमान होने के बाद सूर्य की रोशनी उनको न मिलता तो वो ये बात कहते, रोशनी तो मिल ही रहा है, फिर बिना मतलब का विवाद। और दूसरी बात, वो आसन वास्तव में उस आसन से सूर्य को नमस्कार किया ही नहीं है, तो उस आसन का नाम सूर्य नमस्कार आसन क्यों रखा था? क्योंकि उसमें 12 पोज हैं, इतनी हेतु था उसका। वो जो फिजिकल एक्सरसाइज का जो पोज है उसमें 12 पोज है, और सूर्य 12 है, तो वो 12 संख्या के समानता के चलते उस आसन के पोज को सूर्य नमस्कार ये कहा, अन्यथा वो सूर्य नमस्कार नहीं है। हाँ, कोई एक्सरसाइज है, व्यायाम है, अब नाम दिया सूर्य नमस्कार आसन, बोले सूर्य को हम क्यों नमस्कार करें, तो हम नहीं करेंगे। तो सरकार ने सूर्य नमस्कार आसन के आइटमों को ही हटा दिया, कराया नहीं, आइटम ही हटा दी, और आसन करो, सूर्य नमस्कार न करो। और एक महात्मा ने कह दिया, ओम उच्चारण नहीं करते तो अल्लाह अल्लाह करो। हे भगवान, क्या बवाल है भाई। सस्य तज्जन्म सस्यम अखिलम सफलम न अन्यत व्यतिरिक, उसी का जन्म फलीभूत होगा, सब फल होगा, तो वही पौधा आगे जाकर फलीभूत होगा जिस पौधे को लगाने के बाद नियमित रूप में मल और जल का सिंचन होता रहा हो। और मल और जल का सिंचन नहीं होगा तो वह पौधा सफल नहीं होगा, फलेगा ही नहीं। तो ये जीवन भी तभी सफल होगा जब शिव भक्ति रूपी बादल शिव चरण रूपी आकाश में गर्जने लगेंगे और संतोष रूपी वृष्टि उस भक्ति रूपी बादल से बरसने लगेंगे, तो मन रूपी खेत संतोष रूपी पानी से लबालब भर जाएगा। और मन रूपी खेत संतोष रूपी पानी से लबालब भरेगा तो उसी मन के द्वारा परिचालित होने वाला जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा जीवन फिर क्या होगा? निष्फल। निष्फल का अर्थ क्या हुआ? जन्म जीवन बेकार चला जाएगा, जीवन बेकार चला जाएगा।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Nangarana बंधन से मुक्ति का साधन नहीं कहा जाता है, क्योंकि आप बड़े गहराई में बंधे हुए हैं, समझे ना? आपको उस बंधन का पता भी नहीं है कि हम कहां बंधे हैं। हम बाहर के वस्तुओं से बंधन मानते, परंतु बाह्य वस्तु आपको कोई नहीं बांधती है, ध्यान रखो। बाह्य वस्तु तुम्हें कोई बांध नहीं सकती है, तुम अपने ही बंधन से बंधे हुए हैं, इसलिए अपने ही बंधन से तुम्हें छुटना है, और ये केवल भक्ति छुड़ा सकती है, समझे ना? और कोई साधन नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भजन भक्ति होना चाहिए, भजन पुण्य नहीं होना चाहिए, भजन धर्म नहीं होना चाहिए, भजन सत्कर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए भजन में ध्यान रखना चाहिए, समझ गए? हमारा भजन क्या बन रहा है? यदि हम परमात्मा से समर्पित है, परमात्मा के बनकर के हम भजन कर रहे हो, तो निश्चित आपका भजन भक्ति बन रहा है। मंदिर में बैठने का अर्थ परमात्मा का बनना कदापि नहीं है। जितने पुजारी होते हैं ना, हम देखते हैं, हमारे विले पार्ले के पुजारियों को मैं देखता हूं, मंदिर में रहने का अर्थ परमात्मा का बनना नहीं है। तुम जंगल में रहो, बाजार में रहो, दुकान में रहो, तुम कहीं भी परमात्मा का बन सकते हो, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है। ये तुम्हें बोध हो जाएगा तो तुम कहीं भी परमात्मा का बन सकते हो, परंतु तुम तो परमात्मा को मंदिर में देखते हो, एक वस्तु में देखते हो, एक धातु में देखते हो, और तब तुम्हें लगता है कि हम मंदिर में जाएंगे तो परमात्मा का बनेंगे, घर में रहेंगे तो परमात्मा का नहीं बनेंगे, है ना? इस परिच्छिन्नता का, इस भाव का त्याग करना होगा, परमात्मा को सर्वत्र जानना होगा, जब परमात्मा को सर्वत्र जानोगे तो परमात्मा सर्वत्र दिखेगा, और जब सर्वत्र परमात्मा दिखेगा तो आप परमात्मा का आपको बनने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए तो हमने कहा कि परमात्मा को जानना भी चाहिए, समझिए ना, बिना जाने भजन नहीं होता है, इसलिए भजन में ज्ञान आवश्यक है। और परमात्मा को जानने का अर्थ होता है तात्विक जानना। परमात्मा का जो तात्विक रूप है, जब तक उस तात्विक रूप का आपको बोध नहीं होगा तब तक परमात्मा को आप जान नहीं पाओगे, भले मान पाओगे, मान सकते हो परंतु जान नहीं सकते। मानने में और जानने में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, ध्यान रखो। मान्यता सत्य होती ही नहीं है, बोध सत्य होता है। मान्यता सत्य नहीं होती है, क्योंकि मान्यता मन की होती है और मन में हमेशा दुविधा रहती है। संकल्प विकल्पात्मक मन, ये मन का स्वरूप है। मन एक जैसा रह नहीं सकता है, कभी मानोगे कभी नहीं मानोगे, है ना। तो कभी मानोगे और कभी नहीं मानोगे तो दोनों भी झूठा हो जाएगा कि नहीं होगा, हा? कभी हां कह रहे कभी ना कह रहे तो वो दूसरा आदमी आपको क्या कहेगा, बोलो, क्या सत्य कहेगा झूठा ही कहेगा। इसी प्रकार से मन की मान्यता जो है वो कभी भी सत्य नहीं हो सकती है, परंतु बुद्धि में जो बोध होता है वो बोध सत्य होता है। और जानने का मतलब होता है बोध, बुद्धि में आपको अनुभव होना चाहिए। जैसे आपको आपने चेतनता का अनुभव है कि मैं चेतन हूं, है ना, क्या आपको अपना जड़ता का अनुभव होता है? शरीर की जड़ता का अनुभव आप कर सकते हो, परंतु शरीर की जड़ता का अनुभव करने वाला चेतन ही होगा कि नहीं होगा? तो जैसा आप अपनी चेतनता का अनुभव कर सकते हो, ऐसा ही परमात्मा का भी आपको अपने में अनुभव करना होगा। भिन्न रूप से नहीं, अभिन्न रूप से अनुभव करना होगा। और जब अभिन्न रूप से आप अनुभव करोगे तो परमात्मा के साथ एक हो जाओगे, फिर आपका प्रत्येक कर्म भजन बन जाएगा। क्या भजन का अर्थ केवल हाथ में माला लेकर के माला घुमाने का अर्थ भजन नहीं है, ना हाथ में मंजिरा लेकर के जोर जोर से बजाना भजन है, और ना राग रागिनियां गाना भजन है। संगीत है, भजन नहीं है, ध्यान रखना। संगीत को भजन मत समझो और भजन को संगीत मत बनाओ। संगीत जो होता है वो वाणी का होता है, भजन जो होता है वो बुद्धि का होता है, ध्यान रखो। समझ रहे ना, संगीत जो होगा वो वाणी का होगा, इंद्रियों का होगा। नृत्य भी संगीत है, परंतु संगीतकार उसी को ही भजन समझते हैं। नहीं, भजन बुद्धि का होता है, समझे ना। मैंने कहा भजनम नाम रसनम, भजन का अर्थ होता है रस। रस रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा तृप्त भवति, वो रस जब प्राप्त होता है तब जीवन में तृप्ति आती है, ध्यान रखो। भक्ति जीवन में आ जाती है तो नारद जी कहते यम लब्ध्वा पुमान तृप्तो भवति, ये भक्ति का फल है। भक्ति जीवन में आ जाती है तो तृप्ति हो जाती है। पूर्ण केला पूर्ण केला पूर्ण केला मनोरथ। तुकाराम कहते कि अब हम पूर्ण हो गए। कामना ही झालो पाई रिकामा, अब सब इच्छाएं समाप्त हो गई है, खाली हो गए। तृप्ति का अर्थ होता है खाली हो जाना, इच्छाओं से मुक्त हो जाना, कामनाओं से मुक्त हो जाना। इसका नाम भजन है, ये भक्ति है। भजन भक्ति का मतलब ये नहीं है कि संगीत, भजन संगीत नहीं है, भजन बोध है, बोध समझे, बुद्धि में। और तब भजन होता है जब बुद्धि समर्पित होती है। मई बुद्धि निवेश है, भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? मई बुद्धि निवेश है, तुम मन को बुद्धि को मन को मेरे में लगा दो, अर्थात मेरे को समर्पण कर। मैयासक्त मनपार्थ, हे अर्जुन तुम अपने मन को मेरे में आसक्त करो। मन परमात्मा में आसक्त हो जाए, बुद्धि परमात्मा में प्रविष्ट हो जाए, तब भजन होता है। ध्यान रखो, भला ये संगीत हो, संगीत संगीत को भजन मत समझो, और इसमें मोहित मत हो, भजन करने का प्रयास करो। परंतु हम तो संगीत को ही, यहां जब भजन संध्या होती है ना तो हॉल में बैठने के लिए जगह नहीं होती है, खचाखच भर देते हैं, क्योंकि वहां रस मिलता है, श्रृंगार रस मिलता है, श्रृंगार रस बड़ा आनंद आता है, भले डोलने लगते हैं, है ना। परंतु क्या वो डोलने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? नहीं। ध्यान रखो, थोड़ा उठो, जगो, ये प्रेमपुरी अध्यात्म भवन है, समझे ना, संगीत भवन नहीं है। परंतु संगीत भवन बनाने जा रहे हैं अभी। यहां जो अध्यात्म का जो चिंतन चलना चाहिए वो न चल करके अभी दूसरा ही चिंतन हो रहा है, दुर्भाग्य है। देखो, भजन की ओर चलो, भजन भक्ति है और भक्ति ही मुक्ति है। ध्यान रखो, क्या भजन ही मुक्ति है, मुख्य नाम हाति मोक्ष, ऐसी साक्ष्य बहुताज जी कहा है। परमात्मा का नाम मुख में आ जाए तो हाथ में मोक्ष आना चाहिए, मोक्ष समझे ना, अर्थात बंधन से। आपके मन में ये होना चाहिए कि हम निर्बंध है, निर्बंध, निर्भय है, निर्भय, और तब निर्भय हो जाते हैं कि बुद्धि जब परमात्मा में समर्पित हो जाती है, बुद्धि का परमात्मा में प्रवेश हो जाता है तो मैं निर्भय, मन निर्भय बन जाता है। क्या बुद्धि यदि संसार में हो, बुद्धि यदि द्वैत में हो, बुद्धि यदि भोग में हो, तो तुम कभी भी भय से मुक्त नहीं हो सकते हैं, तुम्हारा मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। इसलिए मन में शांति चाहते हो तो बुद्धि में परमात्मा को बसाओ और बुद्धि परमात्मा में लगाओ, भोग में मत लगाओ। आपका जीवन बुद्धि के ऊपर निर्भर है। क्या लगाना किसके तरफ है? वो आपके ऊपर है, आपका पुरुषार्थ पर है। आप कहां रहते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, कैसे सोते हो, किस समय उठते हो, किस समय जगते हो, वो कोई प्रश्न नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ वही है कि आपकी बुद्धि कहां है, सावधानी वहां होना चाहिए, समझे ना।
1: मुझे एक आदमी आया, कहा कि स्वामी जी आपकी नित्य दिनचर्या क्या है। हमने कहा कि कौन सी दिनचर्या बताना है भाई। कहा कि आप सुबह से उठते रात तक क्या क्या करते हो। हमने कहा कर्म बताना है तुम्हें क्या क्या करना है। लोग दिनचर्या पूछते हैं, है ना।
2: इस दिनचर्या का कोई अर्थ नहीं है भक्ति में, परमार्थ में, अध्यात्म में इसका कोई तात्पर्य नहीं है। तुम क्या खाते हो, कैसे रहते हो, नंगे रहते हो या कपड़े पहनते हो, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। तुम रोटी खाते हो कि भूखे रहते हो, इसका भी कोई महत्व नहीं। तुम्हारा बुद्धि क्या कर रही है, तुम्हारा मन क्या कह रहा है, ये दो वस्तु परमात्मा को चाहिए। और वो यदि तुम परमात्मा को देते हैं तो तुम परमात्मा का बन सकते हो। भगवान ने जगह जगह अर्जुन को यही बात बताई है, है ना। गीता सुनते आ रहे हो, गीता पढ़ते आ रहे हो, परंतु करते क्या हो। आपको क्या किसी ने कहा कि आप तो भगवान हैं तो तुम्हें बड़ा डर लग जाता है, है ना। हाँ, तुम्हें गोविंद राम है, श्याम राव है कहे तो बड़ी छाती फूल जाती है, परंतु तुम्हें भगवान कहता तो मैं डर लगता है, ब्रह्म कहे तो फिर तो बातें ही क्या है। फिर तो क्यों, इसी से पता चल जाता है कि तुम हो कहां, तुम्हारी स्थिति क्या है, इसी से पता लग जाती है। परमात्मा का कोई तुम्हें कहता तो तुम्हें डर लगता है, संसार का कोई कहता तो बड़े उछलते हो, है ना। ये तुम्हारी मानसिक बौद्धिक दरिद्रता है। क्या है, तुकामने संकोचो निकारे झाला शिलान घी अपोषण ब्रह्मांडाचे। इस दरिद्रता को छोड़ो, परमात्मा का बनोगे तो ये विश्वचि माझे घर ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, फिर उसको कोई कमी नहीं रहता है। तुका मने अम्मी त्रैलोकी चे राजे, शिवाजी को फटकार दिया था तुकाराम ने, दिवट्या छत्री घोड़े हे तो बजा सी न पड़े। कहा है कि तुमने ये तो दिया, ये हमारे क्या काम का, हमारे तो कुछ भी जरूरत है नहीं है इसकी, तुम हमें क्या गरीब समझते हो। नहीं, तुका मनी अम्मी त्रैलोक की चे राजे, तू तो एक महाराष्ट्र का राजा है, परंतु हम तो तीनों लोक के राजे हैं। देखो अधिकार किससे, भक्ति से। इसलिए परमात्मा को देना हो तो धन मत दो, परमात्मा को देना हो तो माला फूलमाला मत चढ़ाओ, परमात्मा को देना हो तो मन के पुष्पों को दो, मन को समर्पित करो, बुद्धि को अर्पण करो। बुद्धि और मन परमात्मा चाहते हैं, और ये तुम्हारा परमात्मा के साथ इसका संबंध जुड़ जाए तब जो भी होगा वो भजन होगा, भजन रस बन जाएगा। रस क्या, भजनम नाम रसनम कहा है, भजन का अर्थ होता है रस। और रस कौन सा, ये नवरस नहीं, ब्रह्म रस। सेवी तो हा रस बाटी तो आनी का घ्यारी हो न का रान भरी। तुकाराम ने कहा है कि जिस रस का मैं पान करता हूं वही रस तुम्हें भी दे सकता हूं, तुम भी इसका पान करो। ब्रह्म रस, ब्रह्म रस, रसो वही सह। श्रुति कहती है कि परमात्मा रस है, परमात्मा रस जो ये रस है ना, ये रस को ही सगुण साकार कहा है, परमात्मा का यही सगुण साकार रूप है, ध्यान रखो।
3: ये रस जो है ये साकार है, गुण है, गुण परमात्मा गुण वाला बन गया। ये रस यदि आपके जीवन में आ जाए तो आपके जीवन में तृप्ति आ जाती है, आपके जीवन में पूर्णता आ जाती है, आपके जीवन में जीवन की सफलता हो जाती है, आपका जीवन कृतकृत्य होता है। ध्यान रखो, अन्यथा कुछ नहीं है, टाली पिटने से कुछ नहीं होता है।

हे राम झाले मन हे राम झाले प्रवृत्ती ग्रासुनी कैसे निवृत्तीशी आले। मन को यदि परमात्मा में लगाओगे तो मन परमात्मा बन जाएगा, मन परमात्मा बन जाएगा तो फल क्या है, मन की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जहां प्रवृत्ति की समाप्ति है वही तृप्ति है, ध्यान रखो। उस तृप्ति का नाम ही निवृत्ति है, उस तृप्ति का नाम ही पूर्णता है। और प्रवृत्ति का अर्थ ही होता है अपूर्णता, प्रवृत्ति का नाम ही होता है दुख। और प्रवृत्ति समाप्त होने का अर्थ ही होता है सुख आनंद। मन की प्रवृत्ति समाप्त हो गई तो बुद्धि आनंद से भर जाती है, बुद्धि तृप्त हो जाती है, बुद्धि पूर्ण हो जाती है। और बुद्धि पूर्ण हो गई तो आपका जीवन पूर्ण हो जाता है, फिर अपूर्णता नहीं रहती है, फिर जन्म मृत्यु नहीं है। उसी का नाम तो मुक्ति है। मुक्ति कोई गांव नहीं है, वैकुंठ जैसे आप लोग समझते हैं कि आकाश में कोई वैकुंठ टंगा हुआ होगा, है ना? जैसे तारे टंगे हुए हैं ना, तारों को देखते हैं कि नहीं, ऐसा ही आप कल्पना करते हैं कि ऐसा ही कहीं वैकुंठ भी होगा, वहां मुझे जाना है, ये कल्पना है। सब लोग आपके अंदर है, तो ब्रह्मांड में है वो सब पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए उसकी कल्पना छोड़ो, अपने अंदर खोजो। बुद्धि यदि पूर्ण हो गई तो आपका जीवन पूर्ण हो गया, समाप्त तो हो गया आपका जन्म मृत्यु। मोक्ष मरने के बाद नहीं होता है, हां स्वर्ग मरने के बाद होता है ऐसा लोग कहते हैं, देखा किसी ने भी नहीं है, है ना? देखा है किसी ने स्वर्ग? स्वर्ग स्वर्ग देखने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए मरना होता है, है ना? परंतु मुक्त होने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, मरना ही समाप्त होता है। कितना अंतर है। मुक्त होने के लिए मरना नहीं होता है, मृत्यु ही समाप्त होती है। मरण माझे मरुनि गेले, तुकाराम कहते हैं, मदते केले अमर, मेरी मृत्यु ही क्या हो गई, मर गई। मृत्यु मरने का अर्थ होता है प्रवृत्ति की समाप्ति, ध्यान रखो। क्या मृत्यु की मृत्यु की ही समाप्ति का अर्थ होता है प्रवृत्ति की समाप्ति, और प्रवृत्ति की समाप्ति का अर्थ ही होता है भक्ति, समझ ही ना? और भक्ति का अर्थ ही होता है तृप्ति, पूर्णता, मुक्ति। या भक्ति होगी वही मुक्ति होगी, मुक्ति भक्ति को छोड़कर के रह नहीं सकती है, समझे ना? इसलिए हमें सावधानी रखना है। बहुत जीवन चला गया, थोड़ा रहा है, अब थोड़े जीवन में हमें ऐसा अभ्यास करना है हम भोग की ओर न जाए, योग की ओर जाए। इसका अर्थ नहीं कि योगा की क्लास में आ जाना है, योग योगा अलग है, योग अलग है, समझ? ये योगा है, हाथ पैर की कसरत है, शरीर का व्यायाम है। योग बाहर नहीं होता, योग अंदर होता है, समझ? परमात्मा का और बुद्धि का जो संबंध जुड़ जाए उसका नाम है संयोग, सम्यक योग है वो, सम्यक योग। बुद्धि को परमात्मा

के साथ जोड़ने का अभ्यास करो, मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास करो। भोगों में लगाने से नहीं, सुविधाओं में लगाने से सुखी नहीं हो जाओगे। सुविधाएं सुख नहीं देती है, सुविधा केवल सुख भासवाती है, देती नहीं है। सुविधाओं से कोई भी आज तक सुखी नहीं हुआ है और ना हो सकता है। तुकाराम ने इसमें नामदेव का एक प्रमाण है, 18 भार वनस्पति फली फुली ओळती, 22 पोखरणी नदी गंगा वहाती, जा घरी कुल स्त्रिया राज्य राजीव संपत्ति, हे सुख सांडोनिया कासया योग सेविती। ये सुविधाएं हैं, ये योग नहीं है। इसलिए कहने का तात्पर्य है, आज का जो ये शिवरात्रि का महापर्व है, अपने मन को कल्याण के मार्ग पर ले चलाओ, बुद्धि को उसमें लगाओ, तो हमारा कल्याण है। अर्थात मन को और बुद्धि को, बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान हो और मन में परमात्मा का भजन हो। क्या? अर्थात मन में परमात्मा का चिंतन हो और बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान हो, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। क्या? बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान हो, और ये ध्यान रखो, ज्ञान परिच्छिन्न नहीं होता है, ज्ञान कोई रूप वाला नहीं होता है, गुण वाला नहीं होता है, अंदर का निश्चय होता है, निश्चय अनुभव होता है, अनुभव। बुद्धि में परमात्मा का अनुभव होना चाहिए और मन में परमात्मा का भजन होना चाहिए। ये दोनों की एकता हो जाए तो इंद्रिया अपने आप ही उनके पीछे चलती है। इंद्रिया तो गुलाम है, मन की गुलाम है। मन जहां चलेगा वहां इंद्रिया भी अपने आप जाएगी। मन में यदि परमात्मा का भजन होता तो इंद्रिया परमात्मा को ही देख सकती है, परमात्मा को ही सुन सकती है, परमात्मा को ही चख सकती है, ये ध्यान रखो। और मन में यदि परमात्मा का चिंतन नहीं है, परमात्मा का भजन नहीं है, तो इंद्रिया भोगों का, विषयों का सेवन करती है। आपको अनुभव करना होगा। काय खातो आम्मी कासिया सांगाते, लागते हैं मुखी कया नैनो कैसे। अर्थात मन में यदि भजन है तो बाहर हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे इसका कोई अर्थ नहीं होता है, समझ ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में भजन को लाओ और अपना कल्याण करो। मन में भजन रखो, बुद्धि में ज्ञान रखो, ये दोनों साथ हो जाए तो निश्चित हमारे जीवन में तृप्ति मिलेगी, पूर्णता मिलेगी, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा और जीवन में सफलता होगी।

0: சிவாய. யூஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரோபனிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: लेकिन वो बड़ा प्रसन्न था. अन्य राजा जिसको पकड़ा जाता था वो बेचारे रोते थे कि अब तो एक साल के हैं, इसलिए राज्य में रहकर के वो कोई विकास भी नहीं कर पाते थे. अब जो है उसे जब बनाया गया तो वो बड़ा प्रसन्न था. ले गए पुराने राजा को, समुद्र में डुबा दिया गया और उसको ला करके सिंहासन पर बैठा दिया गया. वो जब सिंहासन पर बैठा तो उसने देखा कि मेरे से पूर्व जो राजा हुए ये किस प्रकार के थे, इन्होंने कुछ भी नहीं कर पाया. इस राज्य में इतना कोष विद्यमान है, इतना खजाना विद्यमान है, इस राज्य को उन्नत किया जा सकता है, सारी जनता को सुखी बनाया जा सकता है और स्वयं भी सुख को प्राप्त किया जा सकता है. वही कैसे राजा थे, ऐसा उसने विचार किया, देखा धन को, फिर उसने कार्य करना शुरू किया. उसने उस कोष को निकाला और वो लोग तो चिंता में ही मर जाते थे, न तो जो है उसका विकास कर पाते थे न कुछ, है ना. अब जो है उसने जो है उसको निकाला, जगह जगह उसने उद्योग धंधे लगाए, कच्चा माल बनवाना शुरू किया, कच्चे को पक्का बनवाना शुरू किया, कृषि का विकास किया और जो है सेना को भी बढ़ाया और सेना के लिए जो है साधन भी बढ़ाए. इस प्रकार से उसने जनता के लिए बहुत कुछ किया और अच्छा जो है उस टापू का राज उसने चलाया. सारी जनता उसे भगवान की तरह मानने लगी. और इतना ही नहीं किया, ये तो उसने किया जनता के लिए, देश की सेवा की. फिर उसने सोचा जब इतना सब कुछ है, जनता का अब सुख पूरा हो चुका है, तो अपने लिए भी कुछ करना चाहिए. अब जब उसने ये विचार किया अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, तो उसने भी जो है बढ़िया और है राजभवन था बढ़िया बनवाया, सुरक्षित राजभवन बनवाया, सेना एना आदि बढ़ा ली और सब ये सब काम भी किए. लेकिन वहीं पर दूसरा काम उसने क्या किया, वहीं राज्य में एक सरोवर था, वो सरोवर जो है गंदा पड़ा हुआ था और उसमें जो है गहराई भी नहीं रह गई थी, सारा कचरा भरता रहा, गंदा भी हो गया और गहराई भी नहीं रह गई, गंभीरता भी नहीं रह गई. तो उसने क्या किया, उस कोष से निकाल करके जो है उस धन को उसने उसमें लगाया, उसकी गहराई करवाई, उसके कचरे को बाहर कराया और उसने जो है जल को भरवाया. और जब वो गहरा हो गया, जल भर गया, स्वच्छ हो गया, साफ हो गया, फिर उसने सुंदर योग्य प्रवीण उस्तादों को बुलाया और उनको बुला करके उसने उसमें सरोवर में तैरना सीखा. क्या किया, उसने तैरना सीखा.